107.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून 2026। इस समय 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ के रिलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ. एम. नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन।
3: बहुधा हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि हम परहित कार्य क्यों करें। वर्तमान पीढ़ी सौहित के कार्यों में इस तरह निमग्न है कि परहित के विषय में सोचने को भी उसके पास समय नहीं। अपने क्यों भी जीते हैं, केवल मनुष्य में ही ऐसी क्षमता है कि वह चाहे तो दूसरों के लिए भी जी सकता है। प्रकृति से यदि हम सीखना चाहें तो परहित के अनेक उदाहरण मिलते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, नहीं बरसता पानी, हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि पलितानी। दिन करने के कारण ही ईश्वर का एक नाम दीनबंधु भी है। जन सेवा ही प्रभु सेवा है के मूल मंत्र को साकार करने वाले स्वामी विवेकानंद जनहित के कारण ही विश्वविख्यात हो गए। हमारी भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि मानव मात्र की कल्याण भावना से ओतप्रोत रही है। जो भी कार्य संपादित होते हैं वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की दृष्टि से होते हैं। उपासना आदि करते हैं वह भी इसलिए कि हम स्वार्थ के दोष से मुक्त हों और दूसरों के प्रति सदैव भला करें। एक ओर तो हम पूजा पाठ करते हों, देव स्थानों के दर्शन हेतु जाते हों, और दूसरी ओर अपने स्वार्थ की संकीर्ण सीमा के भीतर घिरे हों, तो हमारी ऐसी उपासना आत्मशुद्धि के लिए न होकर व्यावसायिक ही अधिक होती है। ईश्वर की प्रसन्नता तब प्राप्त करते हैं जब हम उसे मात्र मंदिर की मूर्ति में न देख बाहर संसार में पीड़ितों और दुखियारों के भीतर देखते हैं तथा उनकी पीड़ा को यथाशक्ति दूर करने की चेष्टा करते हैं। मात्र अपनी स्तुति या चापलूसी पसंद नहीं। संस्कृति की मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम के पावन उद्देश्य पर आधारित है। यही संस्कृति भारत की आदर्श संस्कृति रही है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व कल्याण की कामना करते हुए लिखा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चितः दुख भाग् भवेत्। ऐसी निर्मल पुनीत भावना सदैव से हमारे देश में प्रवाहित रही है। देश मानव जीवन की सार्थकता केवल इसी में है कि वह अपनी कल्याण कामना के साथ साथ दूसरों के हित और कल्याण की कामना करे, कर उठे और दूसरे गिरे हुओं को भी उठाए, स्वयं गतिमान बने, दूसरों को भी गतिमान बनाए। ईश्वर भक्ति तभी सार्थक है जब आप उस परमपिता परमात्मा की संतान मानव के प्रति आत्मवत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के आधार पर करुणा, दया, संवेदना, सहानुभूति और सहयोग के साथ मानव जाति की सेवा, उत्थान एवं समृद्धि, सुख शांति हेतु अपना जीवन तक समर्पित करने को सनंद रहें। निसंदेह व्यवहारिक जीवन में परहित के सदृश अन्य कोई पुण्य और धर्म का कार्य नहीं है। स्पष्ट कहा है, ऐसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वस्तुतः दूसरों का कल्याण करना समाज को संगठित और विकसित करना है। वहां पाप समाज में विघटन और विसंगता की सृष्टि करता है। हमारे जो आचार एवं कार्य सामाजिक जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं तथा विकसित करते हैं, जो अनुकूल और मर्यादित हैं तथा हमारे जिन कर्मों से समाज विघटित होता है वे ही पाप कहे जाते हैं। और महापुरुषों ने परहित अर्थात परोपकार को धर्म का पर्याय माना है और यह कहा है कि व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में परोपकारियों की प्रशंसा इस प्रकार की गई है, फलवन्ति वृक्षाः, परोपकाराय विहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, एते सर्वे प्रशंसनीयाः।
2: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कौशिकी चक्रवर्ती विजय कोपकर की आवाज़ में भक्ति गीत। रचना है गुरु नानक की, संगीत है आशीष मजुमदार का।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी अब जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्तो ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli jail mein

0: गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था और मैंने बोला कि 1871 में गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश, निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं, जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे, उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार, बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्रनाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा। विषय है खेती में एकीकृत पौध संरक्षण के उपाय। वार्ताकार है RN साहू, सेवानिवृत्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रायगढ़।
1: आज के कृषि चर्चा में खेती किसानी में कीड़ा मकोड़ा और बीमारी पर रासायनिक दवा के इस्तेमाल के पहले का करना चाहिए, ये विषय में बात करबो। रासायनिक उर्वरक के उपयोग फसल कृषि में के अनुसार वैज्ञानिक मन के अनुशंसा के आधार में संतुलित मात्रा में करना चाहिए। जैसे अनाज फसल में नत्रजन 3 भाग, स्फुर 2 भाग, पोटास 1 भाग के अनुपात में करना चाहिए। दलहन फसल में नत्रजन 1 भाग, स्फुर 2.5 भाग और पोटास ला 1 भाग देना चाहिए। इसमें भी स्फुर और पोटास के पूरा मात्रा ला बीज के बोनी के समय या रोपाई के समय देना चाहिए। यूरिया ला थोड़े थोड़े मात्रा में फसल के उम्र के अनुसार 2 से 4 भाग करके देह में अच्छा रहते। सूक्ष्म पोषक तत्व मन के भी उपयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। पौधा के स्वस्थ विकास पर और पूरा उत्पादन क्षमता ले पर नत्रजन, स्फुर और पोटास के अलावा 13 सूक्ष्म पोषक तत्व के जरूरत होते, जैसे गंधक, चूना, बोरान, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, लोहा, तांबा। ये तत्व मन के उपयोग अनुशंसा के आधार में फसल में करे ले कोई भी कीट और बीमारी लगे के संभावना कम हो जाते। खेत में मुख्य फसल के अलावा अन्य जो भी घास है वोला खेत से बाहर कर देना चाहिए। एकर से कीड़ा बीमारी के रोकथाम में मदद मिलते, काबर की घास मन में ही बहुत से कीड़ा बीमारी के फैलाव के कारण होते। प्रकाश प्रपंच के उपयोग खेत में शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे के बीच उपयोग करना चाहिए। इसमें बहुत से कीड़ा मन के कुछ रूप में नियंत्रण हो जाते और कीट के पहचान करे में मदद मिलते। कीट के हानि करे के पहले ही रोकथाम किया जा सकत है। इसमें बल्ब के नीचे परात में मिट्टी तेल युक्त पानी ला रखना पड़ते, जिसमे प्रकाश में कीड़ा मन आते और टकराए के बाद पानी में गिरी तो नष्ट हो जाते। कुछ जगह पीला चिपचिपा ट्रेप के भी उपयोग हमन कर सकथन। इसमें चींटी, चांटा, माटा, मिलीबग के नियंत्रण करे में आसानी होते। इसमें 1 किलो सड़ा गला केला में 10 मिलीलीटर मेलाथियन मिला करके पीला पुट्ठा में अच्छा से पोताई करना है, या पीला पुट्ठा में ग्रीस लपोताई करके पौधा के ऊपर बगीचा में जगह जगह टांग दे में भी कीड़ा मन के नियंत्रण हो जाते। पीट फाल ट्रेप के भी उपयोग करना चाहिए। टमाटर, बैंगन, भिंडी फसल में प्रति एकड़ 6 से 7 जगह मिट्टी के मटका में 10 लीटर पानी में 100 ml मेलाथियन ला घोल करके बीच बीच में रख देथन। इसमें फली विधक कीट के भी अच्छा से नियंत्रण होते। BIT के भी उपयोग किसान मन ला रासायनिक दवा उपयोग करके पहले करना चाहिए। 1 किलोग्राम कोढ़ा में 100 ग्राम गुड़ और 10 ml मेलाथियन मिला करके छोटे छोटे गोली बना के खड़े फसल में बीच बीच में रखना पड़ते, जैसे भिंडी, बैंगन, लौकी, मखना, तोरई के कतार के बीच बीच में रखे जा सकते है। इसमें फल मक्खी और फल के नियंत्रण हो जाते। ट्रेप क्रॉप के भी उपयोग करना चाहिए। ट्रेप क्रॉप में गोभी वर्गीय फसल के यदि खेती करथन तो गोभी फसल के चारों तरफ बाउंड्री में सरसों के 2 कतार लगाना चाहिए। इसमें पत्ता खाने वाला इल्ली के रोकथाम होते। टमाटर फसल के चारों तरफ गेंदा के 2-3 कतार लगाना चाहिए। सूर्यमुखी फसल के चारों तरफ मक्का के 2 कतार लगाए में हेड नोक्रोसिस वायरस के नियंत्रण होते। धान फसल में तना छेदक के रोकथाम पर ट्राइकोकार्ड के 3 से 4 कार्ड प्रति एकड़ उपयोग करना चाहिए। फल विधक कीट के रोकथाम पर बेसिलस थुरेजेंसिस बैक्टीरिया जैविक दवा के उपयोग करना चाहिए। 500 ग्राम दवा 500 लीटर पानी में मिला करके शाम के समय फसल में स्प्रे करना चाहिए। फल वेधक कीट पर NPV वायरस के उपयोग भी 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। ब्यूरिया बेसियाना या मेटारेजियम एनिसेपली को भी उपयोग फल वेधक कीट पर फल वेधक कीट के नियंत्रण पर किया जा सकता है। चूसक कीट के नियंत्रण पर वर्टिसिलियम लेकेनी दवा ला 400 ml दवा प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। इसमें कम खर्चे में स्थायी समाधान मिल सकते। दसपर्णी दवा बना करके कीट नियंत्रण हेतु उपयोग करना चाहिए, जैसे नीम, करण, सीताफल, कनार, चंपा, आंख, निर्गुण के पत्ता ला सड़ा करके छान के पानी मिला के कीट के नियंत्रण पर उपयोग करना चाहिए। गोमूत्र एवं पुराना छाछ और मठा के उपयोग भी सभी प्रकार के कीड़ा मन के नियंत्रण पर किए जा सकते है। ये उपाय मन में यदि कीट के नियंत्रण नहीं हो पाते तो वैज्ञानिक अनुशंसा के आधार में ही रासायनिक दवा के उपयोग करना चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:35 हुए हैं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद 6:40 पर सुनिएगा रामचरितमानस। देश गान का प्रसारण होगा 6:50 पर।

चटपट संगीत का आप आनंद ले सकेंगे 7:05 पर। पूर्व में प्रसारित कार्यक्रमों पर आधारित विशेष कार्यक्रम रेट्रो रायगढ़ का प्रसारण होगा 7:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:45 पर। आकाशवाणी की उपलब्धि पूर्ण 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे रायपुर केंद्र से 8:30 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत का समय रहेगा 10:10 पर। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन सकेंगे 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 11:00 से।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण होगा शाम 5 बजे। शामी गजल का समय रहेगा 5:10 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी हम आपके लिए लेकर आएंगे 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय है जैव विविधताओं का संसार महासागर विश्व महासागर दिवस। चर्चा में सुनिएगा डिजिटल सेवा की ओर अग्रसर भारत, साथ ही सुनिएगा क्रम तुम याद आए। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे 6:20 पर, साथ ही 7:00। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का समय होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है छत पर बागवानी समय की मांग। साथ ही सुनिएगा आज की नसीहत, दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार प्रबंधन, आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:20 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर। विविध संगीत का समय होगा 10:00। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध आप सुन सकेंगे 10:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस। कलाकार है मालिनी नाम्बियार, संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है देश कान समूह स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे देशगान समूह स्वर में, हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर जब हुए हैं, अब समाचार होंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अष्टमः भारत इण्डोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनं ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इण्डोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता। भारत इण्डोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा समुद्रीय व्यापार निवेशः औषधीय स्वास्थ्य सेवाः डिजिटल ऊर्जा सम्पर्कः अंतरिक्षम शिक्षा दूतावास संस्कृति क्षेत्रम इत्यादीनां विविध क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितानां क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विषयेपि विचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। डॉक्टर जयशंकरः स्वस्य प्रारंभिक भाषणे उक्तवान् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये संयुक्त आयोगः चतुर्णां वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरम् आहूयते। अस्मिन् उपवेशने द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु महती प्रगति अभवत्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः अद्य चंडीगढ़ नगरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघस्य सीपीए इत्यस्य भारत क्षेत्रस्य त्रिदिवसीय मंडल द्वितीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः, सम्पूर्ण देशस्य 15 विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन एनटीए इत्यनेन अस्मिन् मासे 21 दिनांके आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 नीट यूजी पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्ने 2 सायं 5:45 पर्यन्तं भारतस्य 150+500 नगरेषु 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। एनटीए इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति, अपितु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षा केंद्र ज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिक जालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वां राज्यं भविष्यति। राज्ये एबीपीएम जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थम् अद्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारश्च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः जेपी नड्डायाः तथा पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ एमओयू इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असमराज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्लक्रीडकाः ह्यः मंगोलियायाम् ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके 2 कांस्यपदके च विजितवन्तः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव पर बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर जुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलेंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जिसमें सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अजय सिंह की आवाज़ में फिल्म एनिमल से ये गीत।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्रोता प्रतिक्रिया में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम की प्रतिक्रिया।
1: आकाशवाणी F90।
2: मेरा नाम पुरुषोत्तम साहू है। सारंगढ़ की ओर से आकाशवाणी रायगढ़ एवं समस्त रेडियो परिवार को हार्दिक बधाई। आज भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक अवसर है। 1936 में आकाशवाणी नाम से जो यात्रा शुरू हुई वह आज 90 वर्षों की स्वर्णिम परंपरा बन चुकी है। यह केवल एक माध्यम नहीं बल्कि जन जन की आवाज, हर सुबह की साथी और शाम की पहचान रही है। सारंगढ़ जैसे अंचल तक सूचना और संस्कृति पहुंचाने में आकाशवाणी ने सराहनीय भूमिका निभाई है। हमें गर्व है कि हम भी इस यात्रा के साक्षी हैं। रेडियो की इस यात्रा के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अजय सिंह की आवाज में ब्रह्मास्त्र फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, तर्ज बनाई है प्रीतम ने।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रेया घोषाल रकीब की आवाज में पुष्पा 2 फिल्म का ये गीत।

0: किताबों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आतिफ असलम की आवाज में टाइगर जिंदा है फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने, तर्ज बनाई है विशाल शेखर ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है पूर्व में प्रसारित कार्यक्रमों पर आधारित विशेष कार्यक्रम रेट्रो रायगढ़। महापुरुषों के जीवन प्रसंग पर केंद्रित धारावाहिक युवा आदर्श के अंतर्गत आज सुनिए महात्मा गांधी का समय का महत्व।

श्रोता, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत है। युवाओं को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि उनमें देश को सक्षम बनाने की क्षमता होती है और देश को बनाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये सोचते ही एक प्रश्न अनायास सामने आता है कि युवाओं के सही मार्गदर्शन के लिए इनका आदर्श कौन हो। इस सवाल के सबके अपने अपने जवाब हो सकते हैं। हर युवक युवती के अपने आदर्श तय करने के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं और इसी आधार पर वो अपना आदर्श बनाते हैं। किसी ने किसी फिल्मी सितारे, क्रिकेटर, फुटबॉलर या किसी टेनिस खिलाड़ी को अपना आदर्श बनाया है, तो किसी ने बिजनेसमैन को। आज युवा पीढ़ी को किसी की वेशभूषा अच्छी लगती है तो किसी की चाल ढाल, किसी का खेल के मैदान में प्रदर्शन आकृष्ट करता है तो किसी को गायक की आवाज। आज के लोकप्रिय शब्द में कहें तो हम उनके फैन बन जाते हैं, और हैरानी तो तब होती है जब समय के अनुसार हमारे ये आदर्श कई बार बदल जाते हैं। पर वास्तव में आदर्श कैसा हो, जिसमें जीवन की परम गुणवत्ता झलकती हो, जो अपने पद चिन्हों को छोड़कर जाने के लिए प्रेरित करता हो, बाहरी चमक दमक नहीं बल्कि आंतरिक तेज उसका प्रमाण हो, जिसमें जीवन के शिखर की झलक निहारी जा सके। आदर्श तो हमेशा कुछ ऐसा होता है जो प्रेरक हो, मार्गदर्शक हो, जिसकी जीवन शैली जीवन प्रसंग में इतना प्रकाश हो कि वो अपने अनुसरण करने वाले को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके, जो स्वयं ही साहसी, संवेदनशील, कर्मठ हो, जिसे देखते ही युवा अपनी ताकत पहचानने लगे, ऊर्जावान महसूस करें और समाज, संस्कृति, देश और मानवता के हित में कार्य करने को प्रेरित हो। कार्यक्रम युवा आदर्श के माध्यम से हम ऐसे ही महापुरुषों के जीवन प्रसंगों से आपको परिचित कराने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने युवाओं के जीवन को स्पष्ट दिशा प्रदान की है। प्रस्तुत है धारावाहिक युवा आदर्श।

महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिन्हें भारत ही नहीं पूरी दुनिया में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। सत्य और अहिंसा के पुजारी जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए अंग्रेजों को झुका दिया और भारत को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आज कार्यक्रम युवा आदर्श के माध्यम से हम महात्मा गांधी के बेहद प्रेरक प्रसंग को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए जानते हैं गांधी जी के जीवन के प्रेरक प्रसंग। श्रोताओं, गांधी जी देश भर में भ्रमण कर चरखा संघ के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। अपने दौरे के दरमियान वे उड़ीसा में किसी सभा को संबोधित करने पहुंचे। उनके भाषण के बाद एक बूढ़ी गरीब महिला वहीं पास खड़ी हुई थी। बाल सफेद हो चुके थे, कपड़े भी साधारण और कमर तक वो झुककर चल रही थी। किसी तरह वो भीड़ से होते हुए गांधी जी तक पहुंची। मुझे गांधी जी को देखना है, ऐसा कहके उन्होंने आग्रह किया और उन तक पहुंचकर उनके पैर छुए और फिर उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा एक तांबे का सिक्का निकाला और गांधी जी के चरणों में रख दिया। गांधी जी ने सावधानी से वो सिक्का उठाया और अपने पास रख लिया। उस समय चरखा संघ का कोष संभालने वाले व्यक्ति ने गांधी जी से वो सिक्का मांगा, लेकिन गांधी जी ने उसे देने से मना कर दिया। कोष के प्रभारी ने कहा, मैं चरखा संघ के लिए हजारों रुपए का चेक संभालता हूँ। और उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप मुझ पर इस सिक्के को लेकर यकीन नहीं कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा, ये तांबे का सिक्का उन हजारों से कहीं ज्यादा कीमती है। यदि किसी के पास लाखों रुपए हैं और वो हजार दो हजार दे देता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिक्का शायद उस महिला की कुल जमा पूंजी थी। उसने अपना सारा संसार दान में दे दिया। कितनी उदारता दिखाई उसने, कितना बड़ा बलिदान दिया उसने। इसलिए इस तांबे के सिक्के का मूल्य मेरे लिए करोड़ों से भी बढ़कर है। इन बातों को सुनकर कोष अधिकारी ने भी अपनी सहमति जताई। श्रोताओं, व्यक्ति धनी हो या ना हो, पर उदार होना ज्यादा जरूरी है। और गांधी जी ने उस वृद्ध महिला की उदारता का आदर किया।

श्रोता, उन दिनों की बात है जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहा करते थे। एक दिन पास ही गांव के कुछ कार्यकर्ता गांधी जी से मिलने आए। उन्होंने गांव में एक सभा का आयोजन किया था जिसमें वे गांधी जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। गांधी जी ने अपने दूसरे दिन का कार्यक्रम देखा और उन कार्यकर्ताओं से पूछा, आप लोगों ने कार्यक्रम कितने बजे निश्चित किया है? कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी, 4 बजे का समय नियत किया गया है। गांधी जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जाने से पहले एक कार्यकर्ता ने कहा, बापू, मैं आपको लेने गाड़ी के साथ एक व्यक्ति को भेजूंगा ताकि आपको सभा स्थल पर पहुंचने में कोई

तकलीफ ना हो। गांधी जी ने उन्हें निश्चित समय पर तैयार रहने का आश्वासन दिया। इसके बाद कार्यकर्ता गांव वापस चले गए। अगले दिन गांधी जी समय पर सभा जाने के लिए तैयार थे। वे गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन 4:15 बजने के बाद भी कोई कार्यकर्ता गाड़ी के साथ उन्हें लेने नहीं पहुंचा। सभा का समय हो रहा था, ऐसे में वे चिंतित हो उठे कि उनके समय पर न पहुंचने पर सबका समय व्यर्थ होगा। लोगों का समय व्यर्थ न हो, इसका उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने उस पर अमल किया। कुछ देर बाद गाड़ी लेकर कार्यकर्ता जब साबरमती आश्रम पहुंचा तो गांधी जी वहां नहीं थे। उन्हें वहां ना पाकर कार्यकर्ता आश्चर्य में पड़ गया और गांव वापस आ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गांधी जी सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और भाषण दे रहे हैं। उपस्थित सभी लोग बड़े ही ध्यान से गांधी जी को सुन रहे थे। सभा समाप्त होने पर कार्यकर्ता बापू के पास गया और बोला, बापू, मैं तो आपको लेने आश्रम गया था, किंतु आप मुझे वहां नहीं मिले, आप यहां कैसे आए? गांधी जी ने उत्तर दिया, जब आप 4:15 बजे तक नहीं पहुंचे तो मैंने साइकिल उठाई और उसे चलाते हुए यहां आ गया। मैं अपने कारण इतने लोगों का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। यह सुनकर कार्यकर्ता बहुत शर्मिंदा हुआ। तब गांधी जी ने उसे समय का महत्व समझाते हुए कहा, समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत कमाओ। श्रोताओं, गांधी जी के इन दो प्रसंगों से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में उदार बने और समय की कीमत, उसके मूल्य को समझें, क्योंकि एक बार जो समय चला गया सो वापस कभी नहीं आएगा।

अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो रायगढ़। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फिर रिलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 47 मिनट हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर, जिसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ललिता शर्मा साथी की आवाज़ में ये गीत।

ललिता शर्मा और साथी के गाय इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मंदर अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:55 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज के शेष कार्यक्रम के बारे में। 8:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी की उपलब्धि पूर्ण 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर की अगली कड़ी, जिसका अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा सुबह 9 बजे से। सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:10 पर। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन सकेंगे 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा सुबह 11 बजे से।

0: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण होगा शाम 5 बजे। शामी गजल का समय रहेगा 5:10 पर। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी का समय होगा 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय है जैव विविधताओं का संसार महासागर विश्व महासागर दिवस, चर्चा डिजिटल सेवा की ओर अग्रसर भारत, डिजी लॉकर ऐप। साथ ही सुनिएगा क्रम तुम याद आए। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे 6:20 पर, साथ ही 7:00। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का समय होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है छत पर बागवानी समय की मांग। आज की नसीहत में सुनिएगा दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार प्रबंधन। साथ ही आप सुन सकेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 6:20 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर। विविध संगीत का समय होगा रात्रि 10:00। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8:00 को है, थोड़ी ही देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
2: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
6: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
7: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
6: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
8: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
6: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंघा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
9: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इजराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला न करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इजराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इजराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
10: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। West Bengal set to become the 36th state and union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. National Testing Agency releases exam city intimation slip for NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on 21st of June. Lok Sabha Speaker Om Birla to inaugurate Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 conference in Chandigarh today. New Delhi says Indonesia is a key pillar of India's Act East policy. Iran fires waves of missiles at Israel for first time since April ceasefire. And in tennis, Germany's Alexander Zverev secures his maiden Grand Slam title with 5-set victory over Italy's Flavio Cobolli in French Open final. And now the news in detail. West Bengal is set to become the 36th state and union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, or Ayushman Bharat PMJ, which is the world's largest publicly funded health assurance scheme. National Health Authority and the Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding today for the implementation of Ayushman Bharat PMJ in the state. Our correspondent has filed this report.
12: Today in Delhi, a memorandum of understanding will be signed with the central government's National Health Authority to this effect in presence of Chief Minister Shubhendu Adhikari and Union Health Minister JP Nadda. With today's move signing, West Bengal will become the last state to

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से।

0: भारत की सबसे परिचित ध्वनियों में से एक बन जाएगी। और फिर आया वह शब्द जिसने संस्था को भारतीय आत्मा से जोड़ दिया, आकाशवाणी। कहा जाता है कि 1930 के दशक में महान विद्वान और संगीताचार्य मैसूर वासुदेवाचार्य ने पहली बार आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया। यह नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो ने इसे आधिकारिक रूप से अपना लिया। पिछले 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल गीत, कार्यक्रम या समाचार ही नहीं सुनाए, बल्कि राष्ट्र की स्मृतियों को संजोया है। स्वतंत्रता की मध्यरात्रि से लेकर आधुनिक भारत की उपलब्धियों तक, संकट की घड़ी से लेकर उत्सव के क्षणों तक आकाशवाणी ने हर युग को अपनी आवाज दी है। आकाशवाणी ने स्वयं को देश के सबसे विश्वसनीय संचार माध्यमों में स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आकाशवाणी ने अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ करते हुए शिक्षा, सूचना और मनोरंजन तीनों ही क्षेत्रों में सार्थक भूमिका निभाई है।
1: स्थापना के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी अपनी स्थापना के इन 90 देश की विकास यात्रा में हम सफर रहा है। इसने सदैव बहुजन सुखा के अपने ध्येय चरिता सूचना, शिक्षा और मनोरंजन तीनों ही क्षेत्र में निभाई है। छत्तीसगढ़ में लोक गीतों और लोक संगीत की शानदार परंपरा रही है। इस लोक कला को संजोने और इसे मंच प्रदान करने में आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ के विकास, सुशासन और लोक कल्याण की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी का योगदान अत्यंत सराहनीय है। आकाशवाणी एकमात्र माध्यम है जो छत्तीसगढ़ में हिंदी और छत्तीसगढ़ी के साथ आदिवासी जनों की बोली हल्बी तथा गोंडी में भी समाचार कार्यक्रम प्रसारित करता है। इससे आदिवासी भाई बहनों को उनकी अपनी बोली में देश और प्रदेश की जानकारी मिल रही है। साथ ही वे केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी जागरूक हो रहे हैं। प्रदेश से नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने में आकाशवाणी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। आकाशवाणी एकमात्र माध्यम है जिसकी पहुंच राज्य के दूर दराज, दुर्गम और वन क्षेत्रों तक है। मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।
0: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आकाशवाणी हमारे साथ हमेशा मौजूद रहा है। आकाशवाणी संचार का सबसे सस्ता, सुलभ और सुगम माध्यम है।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को राम राम, जय जोहार। हम सब जानते हैं कि पिछले 90 साल से आकाशवाणी हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। सवेरे उठने से लेकर रात सोने तक हर समय आकाशवाणी हमारे साथ मौजूद होता था, और मनोरंजन की बात हो, ज्ञान की बात हो, कला संस्कृति की बात हो, जानकारियों की बात हो, मार्गदर्शन की बात हो, हर जगह हर समय आकाशवाणी ने हमारे दिल में, मन में जगह बनाकर महत्वपूर्ण योगदान किया है। संचार का सबसे सस्ता और सुलभ, सुगम माध्यम हमारा आकाशवाणी रहा है। आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ, आम लोगों के लिए मददगार रहा है। तो मैं आकाशवाणी के पूरे परिवार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब हमारे जीवन के अटूट कड़ी बनकर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आप चले हैं। हमारे जीवन का हिस्सा रहा है आकाशवाणी। जब बचपन में सवेरे भक्ति संगीत से प्रारंभ होता था और फिर गांव में तो समाचार का और दूसरा तरीका नहीं था। समाचार सुनना, सवेरे भक्ति संगीत, शास्त्रीय संगीत से प्रारंभ होकर रात के शास्त्रीय संगीत तक हर कदम आकाशवाणी का साथ रहा है। क्रिकेट का शौकीन रहा हूं तो क्रिकेट की कमेंट्री सुनने का बहुत आनंद लिया है। खेत खलिहान जाए तब भी रेडियो ट्रांजिस्टर साथ होता था और सही में हर कदम पर साथ निभाया है आकाशवाणी ने, तो और मैंने अपने जीवन में बहुत उपयोग किया है आकाशवाणी का, बहुत लाभ लिया है, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए, संगीत के लिए और जानकारी के लिए, तो यह हमारे जीवन का अटूट हिस्सा रहा है और मुझे आकाशवाणी का बहुत लाभ मेरे जीवन में मिला है।
0: मंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आकाशवाणी ने 90 वर्षों में जन जन के मन को छुआ है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के उन्मूलन में भी आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: वाणी को ही सुनते सुनते तो जीवन इतना आगे बढ़ा है। बचपने से मुझे याद है मैं अपने बुआ के साथ, अपनी बड़ी दीदियों के साथ बैठा रहता था। आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा साधन होता था कि हमको दूर दराज के क्षेत्रों की कुछ सूचनाएं मिलती थी। वही एक ऐसा साधन होता था जो मनोरंजन का सबसे बड़ा आधार होता था। आकाशवाणी ने 90 वर्ष में जन जन के मन को छुआ है। आकाशवाणी ने अभी हमारे नक्सल उन्मूलन की दिशा में भी वो कर दिखाया है जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। जंगल के अंदर नक्सली सिर्फ रेडियो ही सुना करते थे और आपने हमारे एक आग्रह पर हमारे 15% जो जगदलपुर आकाशवाणी केंद्र है उसमें 15% गोंडी या स्थानीय भाषा के लिए समय था, उसको 50% तक बढ़ाया, इसके लिए आभार है। उसके बाद उन 50% बढ़े हुए में नक्सल उन्मूलन की दिशा में सरेंडर्ड जो पुनर्वासित जो नक्सली थे उनके आपने इंटरव्यूज लगातार दिखाए, उनके लिए भी आपका आभार और अभिनंदन है। और नक्सलियों ने जब कहा कि आकाशवाणी के माध्यम से हमको रेडियो संदेश दिया जाए कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और मैंने रेडियो संदेश अपना रिकॉर्ड करके भेजा और आपने चलाया, उसके बाद 3 बड़े पुनर्वास हुए, ये MMC जोन के 3 पुनर्वास थे, तो मैं उसके लिए भी और ऐसे अनेक अभियानों में देश के साथ समाज के साथ खड़े होने के लिए मैं आकाशवाणी के इन 90 वर्ष पूर्ण होने पर सारे ही देश की जनता को और विशेष रूप से आकाशवाणी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं।
0: आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विश्वसनीयता, व्यापक पहुंच और जन सरोकारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है। आज आकाशवाणी देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों तक अपनी पहुंच रखता है। प्रसारण की भाषाई विविधता, व्यापक पहुंच और बहुआयामी कार्यक्रमों के आधार पर आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में अग्रणी स्थान रखता है। आज इसकी होम सेवा के अंतर्गत देश भर में 479 प्रसारण केंद्र कार्यरत हैं, जिनकी पहुंच भारत के लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र और 99% से अधिक जनसंख्या तक है। आकाशवाणी 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण कर देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करता है। यही व्यापकता और समावेशी दृष्टिकोण इसे देश के सबसे विश्वसनीय जनसंचार माध्यमों में से एक बनाता है। आकाशवाणी ने भारत की विविध भाषाओं, बोलियों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बस्तर के मशहूर और समाज सेवा के लिए वर्ष 1992 में पद्मश्री से सम्मानित धर्मपाल सैनी ने कहा कि आकाशवाणी के समाचार सच्चे होते हैं। श्री सैनी का जन्म जून 1930 में हुआ था और उनकी उम्र अब करीब 96 वर्ष हो चुकी है।
4: आकाशवाणी का मेरा

0: जीवित संबंध है वो चिंतन से शुरू होता है। आकाशवाणी के जो अधिकारी गण है वो मेरे पास आया करते थे और बातचीत तो खूब करते थे वो, लेकिन आखिर में मुझसे जो संक्षेप में जो आकाशवाणी के लिए लिया करते थे मेरी बातचीत, वो अक्सर शिक्षा के ऊपर और खेलकूद और जनता उसका कैसा रिस्पांस कर रही है इससे संबंध हुआ करते थे। तो मैं अंदर जंगलों में बहुत घूमता था, लेकिन मैं देखता था कि लोग बाग आकाशवाणी को बड़े चाव से सुनते हैं और गांव-गांव में कहीं भी गया हूँ तो मैं जरूर कहते थे कि एक ये डब्बा हमको खरीदवा दीजिए। मैंने क्या करूँगी डब्बे से, अरे बोले बहुत बात करता है, अच्छी अच्छी बात करता है, हमारे गांव की बात भी आती है। इस तरह से मैं उनके साथ में आकाशवाणी के संबंध में मेरी ये पहला मुलाकात गांव में हुआ करती थी। कभी कभी किसी भी गांव में गया तो उन्हें आकाशवाणी के डब्बों खरीदने की बात मेरे से अवश्य की है। दूसरा मैं उनसे पूछता था तुमको इसमें से क्या मिल रहा है, बोला इसमें थोड़े से उसको ज्ञान कहते हैं वो मिल रहा है, ये बातें बहुत बताता है, विचार करता है, इतनी कोई तो हमसे बात करता ही नहीं है, हमसे तो जो बातचीत होती है इस डब्बे के द्वारा ही हमको मालूम पड़ता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम अपने घर में रखते हैं तो जो कुछ हमको ज्ञान मिलता है या हमारा दुनिया से जानकारी होती है वो इसी के द्वारा होती है, ये उनका पहला उत्तर हुआ करता था। दूसरा मैं कहता था भाई तुमको इसमें समय पसंद क्या आता है, बोला ये समाचार बहुत देता है और इसमें समाचार सच्चे होते हैं, समय बड़ी बात ये है, जैसे दूसरे लोग समाचार देते हैं तो उसमें झूठ सच मिला ही देते हैं, लेकिन ये एक साधन ऐसा है कि जो सच्चे से सच्चा समाचार जैसा होता है वैसे के वैसे ही देने की कोशिश करता है, हमको इस पर की होगा विश्वास बहुत होता है।
1: समाचारों के प्रसारण की बात करें तो दिल्ली केंद्र से पहला न्यूज बुलेटिन 19 जनवरी 1936 को प्रसारित हुआ था। आकाशवाणी 92 और बोलियों में रोज 600 से अधिक न्यूज बुलेटिन प्रसारित करता है। इसके अलावा अरबी, फ्रेंच, पश्तो और चाइनीज सहित 10 से अधिक विदेशी भाषाओं में भी आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अजय कुमार मंडावी को वर्ष 2023 में कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अजय मंडावी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सैकड़ों युवाओं को लकड़ी की नक्काशी और काष्ठ कला का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और आजीविका से जोड़ा है। अजय मंडावी ने कहा कि आकाशवाणी पहले जितना महत्वपूर्ण था उतना ही आज भी है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से मेरा नाता उस उम्र से है जब मुझको ये समझ नहीं थी कि वो बड़ा सा रेडियो के अंदर कोई बैठ के गाते होंगे छोटे छोटे लोग, ये ऐसा सोचता था मैं। और भाई साहब जब सेल चेंज करने के लिए जाते थे तो मैं उनके पास जाके पूछता था कि वो लोग कहाँ गए जो गाना गाते हैं उसके अंदर। तब से ये सिलसिला शुरू हुआ 1970 से। 1993 में जब मैं जॉब में गया छोटे से गांव में, मेरे एक मित्र हैं आरिफ भाई, उसने कहा कि यार एक छोटा सा रेडियो खरीद ले वो सबसे अच्छा है, तो रेडियो उस समय खरीद के मैं अपने साइट पे लेके चलता था। युवाओं के लिए कार्यक्रम चलता था जिसमें नॉलेजेबल चीजें बताई जाती थी, तो वो हर काम छोड़ के वो सुनते थे। आकाशवाणी आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तब था और आज भी मुझको प्रिय है, मैं रेगुलर सुनता हूँ इन सब चीजों को, या फिर हमारे घर में सुबह एक बार रेडियो चालू होता है तो वो कंटिन्यू रहता है। और जो प्रधानमंत्री ने मन की बात शुरू की और सब लोगों का जिक्र करना शुरू किया, तो ये पहली बार जब मैं सुना तो मुझको लगा कि यार मेरा जिक्र कब होगा, लेकिन ये सौभाग्य रहा कि 2023 में मेरा भी जिक्र हुआ मन की बात में। आकाशवाणी से बहुत सारी नॉलेज की चीजें हमको सुनने को मिलती है।
1: राजनांदगांव के रहने वाले डॉक्टर पुखराज बाफना भी साल 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। डॉक्टर बाफना ने कहा कि आकाशवाणी जन जन की आवाज है। उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही आकाशवाणी सुनते आ रहे हैं और आज भी इसके फैन हैं।
3: मैं हूं डॉक्टर पुखराज बाफना, पद्मश्री, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। किसी भी संस्था के 90 वर्ष पूर्ण करना एक स्वर्णिम शताब्दी का इतिहास बनाता है। आज मेरी उम्र 80 साल की है, हमने बचपन से ही आकाशवाणी को सुना, वो जन जन की आवाज थी, चाहे वो पुराने गीत हो, समाचार हो, मनोरंजन का और समाचार पाने का एकमात्र साधन यही था। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग चाव से आकाशवाणी सुनते हैं। मैंने स्वयं आकाशवाणी में दूरदर्शन में अनेक अनेक कार्यक्रम दिए, खासतौर पर किशोर बच्चों के लिए, ट्राइबल एरिया क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी मैंने बहुत कार्यक्रम दिए। आज भी मैं आकाशवाणी का फैन हूँ और आज की तारीख में हम जब भी यात्रा करते हैं तो कार में हमारा अप्रतिम साथी आकाशवाणी ही होता है। बहुत शुभकामनाएं, 90 वर्ष पूर्ण कर रहा आकाशवाणी, उसके लिए अनेकानेक मंगल कामनाएं।
1: आकाशवाणी देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों तक अपनी पहुंच रखता है। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, नाटक, वार्ताओं, कृषि, युवा और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी ने समाज के विभिन्न वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। किसानों के लिए प्रसारित कार्यक्रमों ने कृषि संबंधी जानकारी और आधुनिक तकनीकों के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी विश्वसनीयता और जनोन्मुखी प्रसारण सेवा के बल पर आकाशवाणी आज करोड़ों श्रोताओं के लिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। खासकर प्राकृतिक आपदाओं के समय इसकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण और भरोसेमंद मानी जाती है। नारायणपुर के गढ़बेंगाल के रहने वाले जनजाति वाद्यंत्र निर्माण और काष्ट शिल्प कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पद्मश्री से सम्मानित पंडी राम मंडावी अपने गांव के चबूतरे पर पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आकाशवाणी के सफर को याद करते हुए बताते हैं कि वे शुरू से ही आकाशवाणी द्वारा हल्बी और गोंडी में प्रसारित कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी इसलिए भी पसंद है क्योंकि रेडियो को लेकर कहीं भी जाया जा सकता है।
4: मैं तो बचपन से ही सुन रहा हूँ, जब से आकाशवाणी वहाँ जगदलपुर में खुला, मैं एक तो सुनता ही था मैं, ये हम जो गांव कार्यक्रम आता था जगदलपुर से, हल्बी में, गोंडी में, और वो सब बताते थे वहाँ से, धान में कौन सा दवाई कीड़ा उड़ा होने से छिड़कना है, सब्जी में क्या छिड़कना है, ये सब बताते थे। रेडियो था तो मैं शाम को चालू करता था, हमारा गोंडी का गाना भी आता था, हल्दी का गाना वाना आता था, वो लोग दौड़ दौड़ के मेरे पास आते रेडियो सुनने के लिए। एक कार्यक्रम देता था हमारा गोंडी में, बहुत पसंद आता था आकाशवाणी जगदलपुर से। हर किस्म का एक टीवी वगैरह आया है, रेडियो का क्या है, मतलब देश देहात में रेडियो को अपन कहीं बैल चराने ले गए, उधर भी पकड़ के गए, कहीं काम कर रहे हैं, लकड़ी का हम लोग काम करते हैं, वहाँ भी चालू करके अपन सुन सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसलिए ये अच्छा है।
1: इसी तरह इस वर्ष पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए रामचंद्र गोडबोले ने कहा कि आकाशवाणी का उनकी पीढ़ी में बहुत महत्व रहा है और पुराने समय में आकाशवाणी ही समाचार और मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था।
5: नमस्कार, मैं रामचंद्र गोडबोले, मैं बारसू यहाँ मैं रहता हूँ और यहाँ आदिवासियों के लिए कुपोषण और पति मेडिकल प्रोजेक्ट चलाते हैं। आकाशवाणी का हम उसमें आकाशवाणी जो सुनते थे कुछ के बारे में ऐसी एक आप वो समाचार हम लोगों ने आकाशवाणी से ही सुना था और आकाशवाणी और समाचार पत्र तो आकाशवाणी हमें सुनते थे जा रहा था 11 बजे ऐसा समाचार सुना मैंने, अच्छा समाचार आया कि हत्या हो गई है, तो वो समाचार और इसमें आकाशवाणी और बहुत 12-13 साल की होगी, 50 साल हो गए, आज भी मैं आकाशवाणी सुनता हूँ तो सुनना आकाशवाणी के और वो बच्चे अच्छा बहुत सारी यादें तो आकाशवाणी आभार करता हूँ इतना आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी आधुनिक तकनीक, FM प्रसारण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और इंटरनेट स्ट्रीमिंग के माध्यम से नई पीढ़ी के श्रोताओं से भी लगातार जुड़ रहा है। समाचारों की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता ने इसे आम जनता के विश्वास का प्रतीक बनाया है। खेल जगत में छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने वाली पद्मश्री से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम ने कहा कि आकाशवाणी ने हमेशा आगे बढ़ने का मौका और सम्मान दिया है।
1: आकाशवाणी भारत का सबसे पुराना और प्रमुख सार्वजनिक रेडियो नेटवर्क है, जो शिक्षा और खेल और मनोरंजन के लिए प्रमुख माना जाता है। कार्यक्रम प्रसारित कर देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाता है और अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। मेरे लिए आकाशवाणी का ये महत्व है कि जब भी मैं खेल के आया हूँ, पहला मतलब जो स्टार्टिंग एक खिलाड़ी के लिए होना चाहिए, आकाशवाणी हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया है, हमारी बातें सुना है, सम्मान दिया है खेल के क्षेत्र में। और जब भी मैं खेल के आई हूँ तो मैं अपने खेल को आकाशवाणी से साझा टीम के साथ हमने कैसा खेला, हमारी जीत कैसी हुई, और हर खिलाड़ियों को आकाशवाणी पूछता है, आगे बढ़ता है, जिससे हर खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस भी आता है कि भाई हम इतना खेल के आ रहे हैं तो हमें कहीं मौका मिलता है अपनी बात कहने का। तो आकाशवाणी मेरे जैसे हर खिलाड़ियों का, मुझे तो दिया ही दिया, और हर खिलाड़ियों को मौका देता है और उनकी बातों को पूरे देश में सुनाता है। तो मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, वो इसी तरह खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते रहे।
0: समाज सेवा के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुकी शमशाद बेगम ने कहा कि आज इतने संचार माध्यम होने के बावजूद आकाशवाणी हर वर्ग के लोगों में लोकप्रिय है।
2: मैं पद्मश्री शमशाद बेगम गुंडरदी जिला बालोद की रहने वाली हूं। आप सभी को जय हो। आकाशवाणी कार्यक्रम मैं बचपन से ही सुनती आ रही। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्वरोजगार से जुड़ी मेरी बहनों की कहानी और किसान भाइयों के लिए नई नई तकनीकी जानकारी, ये सब भी मुझे बहुत पसंद आती है। आज संचार के इतने माध्यम होने के बावजूद भी आकाशवाणी हर वर्ग के लोगों में लोकप्रिय है। गांव में आज भी लोग आकाशवाणी कार्यक्रम की ज्ञानवर्धक जानकारियों को और मनोरंजक बातों को सुनते हैं। मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ।
0: वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित लोक और सूफी गायक मदन चौहान ने कहा कि आकाशवाणी गांव गांव तक समाचार से लेकर गीत संगीत और विभिन्न कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाता रहा है।
3: आकाशवाणी अपने छत्तीसगढ़ का एक सपना है, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था, तो उस जमाने में जो आकाशवाणी आया और शुरू में एकदम आकाशवाणी का जो टावर खमतराई में लगा, क्योंकि पहले स्टूडियो नहीं था तो वहीं करते थे रिकॉर्डिंग उस जमाने में। तो हम लोग जब संगीत के क्षेत्र में उस समय उभरते हुए लोग थे हम लोग, तो हम लोगों को पहला कार्यक्रम मिला वहाँ। और हमसे पहले हमको पता लगा कि कुछ माह पहले बेरे स्टील प्लांट के लिए गीत बनाए थे, उसको आकाशवाणी रायपुर रिकॉर्ड करके प्रेजेंट किया था। उस समय गायक थे रहमान शरीफ थे। उसके बाद सेकेंड रिकॉर्डिंग हम लोगों की, तो उस जमाने में जो हम लोगों का प्रसिद्ध हुआ आकाशवाणी से गाना चना के दार राजा चना के दार रानी, ये एकदम शुरुआती दौर का ही है। एकदम आकाशवाणी रायपुर के दरवाजे के पास से जो लोग गुजरते थे तो सोचते थे कि हमको कब यहाँ चांस मिलेगा। आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं दूंगा। आकाशवाणी की शुरुआत अच्छे दौर में हुई थी, जब वो एक ऐसा दौर था कि एक माध्यम जो गांव का हर चीजों को समाचार से लेकर जितनी भी कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट होते हैं उसको लोगों को सुनने का मौका मिलता था। आकाशवाणी से गाते गाते पद्मश्री तक पहुंचा, वो एक ऐसा दौर था, शुरुआती दौर था हम लोगों का। इतने सारे मुकाम तय करके लोकगीत सुगम संगीत गीत गजल भजन सब चीजों को सीखकर आज इस मुकाम तक हम पहुंचे। मेरे लिए आकाशवाणी पहले भी था और आज भी है और सदा रहेगा।
0: साल 2012 में पद्मश्री से सम्मानित फुल बासन बाई यादव ने कहा कि आज भी आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों और समाचारों को गांव गांव तक सुना जाता है।
4: जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम फुलवासन भाई यादव है। हमारे आकाशवाणी आज 90 साल पूरा कर चुके हैं और वो आकाशवाणी में अपन बचपन के याद हो, चाहे किसान के बात हो या महिला मन के बात हो, लगातार गांव गांव मन में सुने मिलते देखे मिलते। आज भी गांव के महिला मन किसान भाई मन बुजुर्ग मन हाँ रेडियो सुनते, और मैं तो खुद आकाशवाणी के दोस्त है, मैं स्वयं वहाँ गए हूँ और साथ साथ में रेडियो हमारा गाड़ी में भी हमारे लगातार समाचार के बात हो या स्वास्थ्य के बात हो या शिक्षा के बात हो या महिला मन के महिला सशक्तिकरण के बात हो, लगातार नया नया चीज मिलते और अवस्थाओं में आकाशवाणी हम सबके शान बान हरे और एकर से पर आप लोग भी महसूस होते कि हम दुनिया के चीज रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। आप समस्त आकाशवाणी के पूरा तीव्र गाढ़ा गाढ़ा बधाई शुभकामना, जो 90 साल पूरा करना ही बहुत बड़ी बात है और लगातार ऐसे ही आगे बढ़ते रहा है, दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ते रहा है।
0: दुर्ग जिले के रहने वाले पंथी लोक नर्तक और कलाकार पद्मश्री सम्मान पा चुके राधे श्याम बारले ने कहा कि बहुत सारे कलाकारों को आकाशवाणी के माध्यम से देश और दुनिया में प्रसिद्धि मिली है।
5: मैं राधे श्याम बारले पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के निवासी हरा, जो कि मैं बचपना से आकाशवाणी रेडियो ला सुनत आवत हूँ। हमारे रायपुर आकाशवाणी केंद्र ला हम जब नान बचपना में रहा छोटे छोटे, तो हमारे घर बड़े वाला रेडियो रहा है, तुलसी चौरा में बड़ा है और सब घर भर के रेडियो ला सुन। लेकिन 1972 से लगातार मैं आकाशवाणी के श्रोता हरा, आकाशवाणी ला सुनता और आकाशवाणी के बहुत सारे कार्यक्रम फोन इन फरमाई से लोक रंजनी कार्यक्रम के मैं दीवाना रहा हूँ। हमेशा सुबह शाम 12:30 बजे जैसे ही आकाशवाणी चालू है वैसे ही रेडियो चालू करके तुरंत बैठ जाऊँ। शाम के 7:20 भी लोक रंजन के कार्यक्रम सुनत रहन, फोन इन फरमाइसी कार्यक्रम न सुनन और बहुत सारे कार्यक्रम बहुत सारे कलाकार ल भी आकाशवाणी के माध्यम से देश और दुनिया देखे पर मिले है। जैसे स्वर्गीय देवदास बंजारे जी, अमृता बारले, पद्म भूषण डॉक्टर त्रिजन भाई, झाड़ू राम दौंगन है, स्वर्गीय पूना राम निषाद जैसे कलाकार मल्ला आगे बढ़ाए के माध्यम हमारा आकाशवाणी हरे। मैं खुदे आकाशवाणी के भी हाईग्रेड के कलाकार हरा, मुझे सैकड़ों गाना आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से रिकॉर्डिंग हुए है जो देश और दुनिया में बजे है। और मैं तो कहूँ आकाशवाणी है ओरिजिनल स्वर के स्वर ला छान करके निकालते है कलाकार मल्ला देश से दुनिया में बगड़ा के काम हमारा आकाशवाणी प्रसार भारती के करे। मैं आकाशवाणी ला बहुत बहुत धन्यवाद और प्रसार भारती ला बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता, धन्यवाद।
0: आज जब आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है, तब यह केवल एक प्रसारण संस्था की वर्षगांठ नहीं है, बल्कि उस भरोसे, उस विरासत और उस आवाज का उत्सव है जिसने पीढ़ियों को एक सूत्र में बांधे रखा है। बदलते समय और तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए आकाशवाणी आज भी जन जन की आवाज और राष्ट्र की धड़कन बना हुआ है।

वाइब्रेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 9 बजे हैं। अविविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

दोस्तों आज 8 जून है, वर्ल्ड ओशंस डे, विश्व महासागर दिवस। आज पूरा विश्व महासागर दिवस मना रहा है। कहा जाता है यदि पृथ्वी का हृदय कहीं धड़क

0: लगता है तो वो महासागरों में धड़कता है। पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागर से घिरा है। ये महासागर हमें वर्षा, जलवायु, भोजन और ऑक्सीजन का संतुलन प्रदान करते हैं। आज महासागरों में बढ़ता प्रदूषण, खासतौर से प्लास्टिक, एक गंभीर समस्या बन चुका है। जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने जैसी बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं जो महासागरों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। विश्व महासागर दिवस मनाने का ये उद्देश्य है लोगों को महासागरों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना, लोगों को ये याद दिलाना कि समुद्री संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग ना करें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाकर हम महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए संकल्प लें कि प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित रखेंगे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं अब एक और संदेश।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।

रेखा भारद्वाज की आवाज में डेढ़ इश्किया फिल्म का गीत भी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा एक और ब्रेक लिया जाए।

आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है। शिल्पा शेट्टी अपनी खूबसूरती, फिटनेस और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी को जन्मदिन की विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको फिर से याद दिला दें, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर।

अभी आप सुन रहे थे मलाल फिल्म का गीत ऋत्विक तलाशिखर की आवाज थी, प्रशांत इंगोले ने इसे लिखा था, संजय लीला भंसाली का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए सविता सिंह को इजाजत, नमस्कार।

यह है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्ते, और आज की फनकार हैं खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा डिंपल कपाड़िया।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: पहले तुम।
1: पहले तुम।
2: हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। सबसे पहले तो ये कहना है कि आज है डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे।

0: 8 जून सन 1957 को एक गुजराती परिवार में जन्मी डिंपल कापाड़िया को सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म बॉबी में हीरोइन का टाइटल रोल प्ले करने का मौका मिल गया और इस फिल्म ने डिंपल को रातों रात स्टार बना दिया।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

जिस तरह रातों रात उन्हें शोहरत मिली, उसी तरह अचानक ही डिंपल ने इस चमक दमक और स्टारडम को नमस्ते कह दिया और उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया।

राजेश खन्ना के साथ अपने वैवाहिक जीवन में डिंपल को दो बेटियां मिली, ट्विंकल और रिंकी। लेकिन डिंपल का वैवाहिक जीवन ज्यादा लंबा नहीं चल सका।

डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी डिंपल को अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अच्छे जीवन के लिए कोई न कोई फैसला तो करना ही था। स्वाभिमानी डिंपल ने खुद अपने ही बलबूते पर कुछ करने की ठानी और उनके इस फैसले का स्वागत किया फिल्म इंडस्ट्री ने, निर्देशक रमेश सिप्पी ने और उनकी पहली फिल्म के को स्टार ऋषि कपूर ने। 1985 में उनकी कमबैक फिल्म आई सागर।

इस फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया ने अपनी उपस्थिति को फिल्म इंडस्ट्री में मजबूती से दर्ज किया और हर तरह की फिल्में स्वीकार करने लगीं। यानी उस दौर में भी डिंपल ने अपनी फिल्मों में बोल्ड सीन करने में कोई हिचकिच

डिंपल को 1973 में बॉबी और 1985 में फिल्म सागर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और 1991 में फिल्म दृष्टि के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड मिला। और फिर 1993 में डिंपल ने साबित कर दिया कि उनके अंदर कितनी सशक्त अभिनेत्री छिपी है। फिल्म आई रुदाली।

डिंपल की उल्लेखनीय फिल्में हैं क्रांतिवीर, गर्दिश, दिल आशना है, अजूबा, अर्जुन, आज की औरत, काश, जख्मी औरत, लावा, राम लखन।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी और मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की संगठनात्मक बैठक में मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री और मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर ने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक आयोजित कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो रहा है और सरकार की योजनाओं की जानकारी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभंकर पहाड़ी मैना का विमोचन किया। ये प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और प्रदेश की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के अवसर पर रायपुर में आज से विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की आर्ट गैलरी में ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों के छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। 12 जून तक चलने वाली ये प्रदर्शनी प्रतिदिन 11:00 बजे से 5:00 बजे तक लोगों के लिए खुली रहेगी। वहीं 9 जून को अभिलेखों के संरक्षण और उनके महत्व पर विशेष व्याख्यान आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। संस्कृति विभाग द्वारा सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर में आज से आकार पारंपरिक शिल्प और कला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 14 जून तक आयोजित शिविर में युवाओं को 14 प्रकार की पारंपरिक कला विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोक कलाओं और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल तक पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। बालोद जिले के लोक कलाकार प्रेम साहू उर्फ राजू की कल हृदय आघात से मौत हो गई। ये सूचना मिलने के बाद अस्पताल जा रहे उनके माता पिता भी एक सड़क हादसे का शिकार होकर घायल हो गए। धमतरी जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में एक नाबालिग समेत 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अर्जुनी पुलिस ने जांच नाके पर कार और पिकअप से 400 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया। वहीं मेजका पुलिस ने कार से 44 किलोग्राम गांजा बरामद कर 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने कुल 450 किलोग्राम गांजा और तस्करी में प्रयुक्त वाहन जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी और मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: से बोल रहे हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 10 बजे हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद 10:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली के अंदर से किया जाएगा सुबह 11 बजे से।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण होगा शाम 5 बजे। शाम में गजल का समय रहेगा 5:10 पर। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी का समय होगा 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय है जैव विविधताओं का संसार महासागर, विश्व महासागर दिवस, चर्चा डिजिटल सेवा की ओर अग्रसर भारत, डिजी लॉकर ऐप। साथ ही सुनने का क्रम तुम याद आए। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर, साथ ही शाम 7 बजे। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का समय होगा शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है छत पर बागवानी, समय की मांग। आज की नसीहत में सुनिएगा दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार प्रबंधन, आपका टिप कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम। हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:20 पर, का आनंद दे सकेंगे 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात्रि 9 बजे से। पूर्ण होने पर किसान सशक्तिकरण पर विशेष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिल्ली DLC 5 से रात्रि 9:25 से। विविध संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10 बजे। फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध का समय होगा 10:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

Akashwadi at 90. अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: के रायगढ़ के केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 10:10 हुए हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बेगम अख्तर की आवाज में गाई ये गजल, जैसे लिखा है मिर्जा गालिब ने, तर्ज बनाई है खय्याम ने।
1: मुगल बचे भी गजब होते हैं, जिस पर मरते हैं उसको मार रहे।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अहमद मोहम्मद हुसैन की गायी ये गजल।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में गाई ये गजल, जिसे लिखा है राणा शहरी ने, तब जगजीत सिंह ने।

है। हर्ट्स पर कार्यक्रम आपकी फर्स्ट।

अपनी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश लता मंगेशकर की आवाज में धरती कहे पुकार के फिल्म का ये गीत, जैसे लिखा है मजरू ने, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है जतुका किशनपुर से आलम, सबाना, रिजवान, इमरान, आलम शेख, सवाना आलम, चांदनी नाज, पाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा, झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण, विमला, मास्टर हर्ष, खुशी बादवानी, कन्हैया लाल। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: हफ्ते पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: AIR at 90.
1: फरमाइश में माने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा मजरू ने, तर्ज बनाई है SD बर्मन ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है पना, सौरभ, शुभम, श्रेया, शौर्य जैन, आकाश जैन। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं मोरवा से कारी राय, मीना, पुंजराज, आर्यन, आरती, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली शाकरा से जयंत कुमार बैरागी, छत्रपति संभाजी से राजेश पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल पाटिल। सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में श्रोता प्रतिक्रिया में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पूजा पटेल की प्रतिक्रिया।
2: आकाशवाणी F90।
3: नमस्कार, मैं पूजा पटेल सारंगढ़ से और मेरी ओर से समस्त आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने का यह स्वर्णिम अवसर हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। आकाशवाणी ने दर्शकों से जन तक ज्ञान, संगीत, समाचार और संस्कृति की पहुंच बनाई है। रायगढ़ जैसे छोटे से शहर को भी इस राष्ट्रीय माध्यम से जुड़ने का मौका मिला, यह हमारे लिए संतोष की बात है। हम इस यात्रा के प्रति कृतज्ञ हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमन है उन सभी रेडियो कर्मियों को जिनकी मेहनत से यह सफर सफल हुआ। जय हिंद।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला,
0: हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज
4: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली भारती।
5: आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा संतोष आनंद ने, रजनीकांत प्यारे लाल ने, फरमाइश की है इंद्रनगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा, नवगढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, सारथी कमलकांत, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बैरक, जैतक मीका बैरक। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं घोषाला पारा से रीना नेहा, यशु अंशु मेहता, विनोद कुमार गुप्ता, अंशु गुप्ता, गीत

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई है जतिन ललित ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश मंडी, सौरभ, शाइना, निवान शर्मा, बेलरगांव से मिथलेश, मधु, हिमांशु, अंकित देवांगन, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: और फरमाइश करते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश अनुरूप हैं जी, उसका नाम सब्जेक्ट है। हमारा ईमेल आईडी है shrotaraigarh यानी shrotaraigarh।
1: इस गीत की

0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 11 बजे हैं। अब विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कभी कभी इस एल्बम का गाना अनिरुद्ध झा की आवाज, इन्हीं का लिखा हुआ गाना, रेकी का संगीत।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। शायर हैं राजेश रेड्डी, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ें, इन्हीं का संगीत, शब्दकार आर एस हरियाणवी रतन, एल्बम का नाम तस्वीर।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। यूफोरिया की आवाज पलाश और दीक्षांत का लिखा हुआ गाना, संगीत पलाश और डीजे का।

0: ग्यारह बजकर 55 मिनट होने को है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है और राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना भी जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभंकर पहाड़ी मैना का विमोचन किया। ये प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और प्रदेश की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जशपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने रोजगार की मांग दर्ज कराई और जॉब कार्ड निर्माण तथा अद्यतन कार्यों में भाग लिया। विशेष शिविरों में मनरेगा की विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जल संरक्षण कार्यों तथा महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ने दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर शोध पीठ की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना से विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन, राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, जन जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्राधारित अनुसंधान और पीएचडी कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून कल तक पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। बालोद जिले के लोक कलाकार प्रेम साहू उर्फ राजू की कल हृदय आघात से मौत हो गई। ये सूचना मिलने के बाद अस्पताल जा रहे उनके माता पिता भी एक सड़क हादसे का शिकार होकर घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है और राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जाँच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। धड़कन फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।
4: दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
3: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनवाएंगे एक अंतराल के बाद।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम विविध भारती से आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म का गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में रानी मलिक का लिखा हुआ गाना। हमने आपको बताया कि आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम के शुरुआती कुछ गाने उन्हीं की फिल्मों से लिए गए हैं।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: देश की सुरीली धड़कन विविद भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का भी जन्मदिन है, तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने अब आपको सुनवाएंगे। ये है बॉबी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, विठल भाई पटेल का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अब आपको सुनवाते हैं लेकिन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, गुलजार के बोल, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं। बंटवारा फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, हसन कमाल का लिखा हुआ गाना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आज की इबारत जो है वो आपको बता देते हैं। खारे पानी का विशाल जलाशय, दूर से देखो तो मन मोहने वाला नीला रंग दिखाई देता है, जो पृथ्वी की जलवायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे तापमान को नियंत्रित करते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए भी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे जीव इसमें पलते हैं। परिवहन, व्यापार और वाणिज्य के लिए भी ये आवश्यक है। भोजन, ऊर्जा और खनिजों के स्रोत हैं। बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ये। रहस्य और रोमांच से भरी लहरें इसकी रेतीली ज़मीन पर टकराती है, आवेग से आती है और टूट जाती है। जाते हुए अनूठी सौगातें हमें दे जाती है, जैसे सीप, शंख, मोती। शाम होती है, सैलानी चले जाते हैं, पर वे अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। उसका दिल तो देखिए, सबको अपने में आत्मसात कर लेता है। प्रकृति का अटूट समर्पण है ये। मन के भीतर भी लहराता है और बाहर भी अटखेलियां करता है। बताइए क्या है उसका नाम? जी हाँ, उसका नाम है सागर। आज वर्ल्ड ओशियन डे, ओशियंस डे यानी कि विश्व महासागर दिवस है, तो इसी अवसर पर आज हम बातें करेंगे सागर की, समंदर की। बहुत सारी चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं, इसलिए कुछ प्रश्न हैं हमारे, लेकिन वो प्रश्न हम आपसे कुछ देर के बाद पूछेंगे। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि ये धरा का वह अनंत आंचल है जिसकी गहराइयों में अनगिनत राज दफन है। इसका संगीत कभी लोरी की तरह शांत होता है तो कभी तूफान की तरह रौद्र रूप धारण कर लेता है। सूर्य की पहली किरण जब इसके सीने पर पड़ती है तो मानो सोने की चादर बिछ जाती है। वो इंसानों के लिए प्रदूषण को भी अपने भीतर समेट लेता है। ये बिना थके हर सुबह नई उम्मीदों के साथ जागता है। ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं बल्कि पृथ्वी का हृदय है। ये बादलों को जन्म देता है और नदियों को अपनी बाहों में समेट लेता है। इसके किनारे खड़े होकर हर इंसान इसकी विशालता में खो जाता है। जी हाँ, बात जब विशालता की आती है तो किसी भी चीज़ का आकलन हम करते हैं या फिर एक उसका कंपैरिजन जब करते हैं तो कहते हैं सागर की तरह। सागर की तरह गहरी आँखें, सागर की तरह गहरा दिल, सागर के जैसा गहरा प्यार। और भी बहुत जगह जहाँ पर हमें बहुत गहराई दिखानी होती है तो हम उसकी उपमा सागर से करते हैं। ऐसी और कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी बातें हैं जब हम कहते हैं कि ये तो सागर जैसा है? जी बताइएगा हमें। सबसे पहले आपको सीमा फिल्म का गाना सुनवाते हैं। शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, नूतन और बलराज साहनी पर फिल्माया गया गाना है। आवाज़ किसकी है आप हमें बताइए।

मन्ना डे की आवाज़ में सीमा फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि सागर महासागर के कई ऊंच नीच लहरों में छिपी अनगिनत यादों को, मन की भावनाओं को दिल के गहराइयों से सलाम। मिटने वाली सभी निशानियों का कभी अंत नहीं, सूरज को अपने भीतर समाने वाला सागर अथांग तीर में बंदिस्त होकर भी सभी नदियों का पानी पीकर सीमा नहीं छोड़ता है, ये उसकी खासियत है। अपनी सीमाओं से वो बंधा होता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि समंदर शोर भी करता है और सुकून भी देता है, ऊपर से नीला शांत और अंदर मूंगा मोती तूफान सब छुपाए बैठा है। समंदर की हर लहर आती है, वापस जाती है और कहती है कि फिर आऊंगी। वो बना तो बूंद बूंद से है पर बड़े बड़े जहाजों को भी डुबो देता है। फिर भी न छोटा होने का गम और न बड़ा होने का घमंड, वो हजारों नदियों का दर्द पीकर भी गमगीन नहीं होता। इसलिए अक्सर टूटे हुए लोग समंदर के किनारे जाते हैं और से सीखते हैं कि दर्द पीकर भी कैसे मुकम्मल रहा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बारूद फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। इसमें जो आवाज़ है वो लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है। ये कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

मेरी हद है कहाँ तक। जी हाँ, इस बात को हमें याद ज़रूर रखना चाहिए कि हमारी हदें कहाँ तक है। सागर के किनारे हम जाते हैं, अटखेलियाँ करते हैं, आनंद लेते हैं पानी के आने और जाने का, लहरों का आनंद लेते हैं, वहाँ की जो ठंडक होती है उसको महसूस करते हैं। दूर तक दिखता हुआ सागर, जहाँ उसका कोई किनारा नहीं दिखता है, सूरज डूबता रहता है, वो जो मंज़र होता है बहुत खूबसूरत होता है। क्या हमें इस खूबसूरती को बरकरार नहीं रखना चाहिए? ये प्रश्न अभी हमारे सामने है। जब हम समुद्र किनारे जाते हैं, बहुत सारी गंदगी फैला करके आते हैं, उसे गंदा करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी हदें हैं। तो इस बात को बताता हुआ ये गाना आपने सुना। मैंने आपको बताया कि ऋषि कपूर और शोमा आनंद पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समंदर सिर्फ पानी का विशाल संग्रह नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं का आईना है। उसकी खामोशी में भी एक शोर महफिल है, इसकी हर लहर में एक रहस्य छुपा हुआ है, तो गहराइयों में दबी है एक असीम दुनिया, सदियों से बहता फिर भी ताज़ा लगता है। उसकी गहराइयों में कितने रहस्य दफन हैं, उसके हर मोती में कितने ख्वाब छुपे हैं। समंदर की शरण में जिंदगी मुस्कुराती है, उसकी विस्तृतता में एक आज़ादी का एहसास है। देखने में अथाह और शक्तिशाली समंदर, फिर भी कितना बेबस है। यह बेबसी इंसानी फितरत और भावनाओं से भी मेल खाती है, जहाँ हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ खास चीज़ों के लिए लाचार होते हैं। अब आपको हम आगे जो गीत सुनवाने वाले हैं, ये झुक गया आसमान इस फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

झुक गया आसमान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, राजेंद्र कुमार और सायरा बानू पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि आज की इबारत में विशाल अनंत, कभी शांत चित्त तो कभी विकराल रौद्र रूप सिंधु की महिमा बखान है, कभी अटखेलियां करती लहरों और ज्वार भाटा से पर्यटकों को आनंदित करती है, तो कभी पर्यावरण असंतुलन से असंतुष्टि का प्रदर्शन अपने रौद्र रूप चक्रवातों और सुनामी से करती है। समंदर मानव कल्याण के लिए खनिज, जीव जंतु, संचार, परिवहन, देश

सूर्य की हानिकारक और तीव्र गर्मी को सोखकर वैश्विक तापमान को संतुलित रखता है। अगर समुद्र न हो तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले सबसे बड़े सिंक के रूप में काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, सागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। गाना है सागर जैसी आंखों वाली। अभिनेत्री कौन है, उनका आज जन्मदिन भी है तो उन्हें हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्म का ये गाना सुनते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ से जावेद अख्तर की बोल संगीत आरडी बर्मन का।

ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना है, सागर जैसी आंखों वाली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया। आज उनका जन्मदिन भी है, तो एक बार फिर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र केवल खारे पानी का अथाह विस्तार नहीं, बल्कि पृथ्वी का धड़कता हुआ हृदय है। दूर तक फैला उसका नीला कैनवास जितना मनोहारी है, उतनी ही गहरी उसकी संवेदनाएँ हैं। उसकी लहरें तट से मिलने की उत्कंठा में दौड़ती है, टूट जाती है, फिर भी जाते जाते सीप, शंख और मोतियों जैसी अनमोल सौगातें दे जाती है। मानव की उपेक्षा, प्रदूषण और प्रकृति की चुनौतियों को सहते हुए भी वो एक मौन तपस्वी की तरह बिना किसी शिकायत के सब कुछ न्यौछावर कर देता है और सृष्टि के लिए जीवन संतुलन तथा समृद्धि का आधार बना रहता है। अनंत गहराइयों, असीम धैर्य और मानवीय भावनाओं के इस जीवंत दर्पण में अनगिनत कहानियां, रहस्य और जीवन के सूत्र समाये हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अनोखी रात फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज़, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत, संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। संजीव कुमार इस गाने में एक वाहन चलाते हुए दिखाई देते हैं, वो वाहन कौन सा है आप हमें बताइए।

अनोखी रात फिल्म का ये गाना संजीव कुमार पर फिल्माया गया है और इस फिल्मांकन में वो बैलगाड़ी चलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र हमें सिखाता है कि गहराई में ही असली खजाना छिपा होता है। ऊपर लहरों का शोर होता है लेकिन भीतर अनगिनत मोती पलते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि इसका यानी कि समुद्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारी पृथ्वी को करीब 70% घेर के रखता है और हमें हवा पानी मुहैया करवाता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है। इसके किनारे खड़े होने पर अलग अलग समय में अलग अलग दृश्य देखने का रोमांच अलग ही होता है। ठंडी हवा के झोंके से मन आनंदित होता है तो कभी दूर तक शांत दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि समुद्र केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि एक भावना है। इसे देखकर मन में असीम शांति और कभी कभी विचारों का ज्वार भाटा उठता है। यह बाहर जितनी अटखेलियां करता है इंसान के भीतर भी उतनी ही गहरी हलचल पैदा करता है। समुद्र की लहरें जब तट की रेतीली किनारे से टकराती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। लहरें अपने साथ गहरे समंदर में सुंदर सीप शंख और मोती तट पर छोड़ जाती है जिन्हें लोग यादों के तौर पर समेट लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रंगोली फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, शैलेंद्र के बोल और संगीत है शंकर जी जयकिशन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है आप बताइए हमें।

अभिनेत्री वैजयंती माला ये गीत गा रही हैं फिल्म में जो हमें दिखाई देता है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सागर की लहरें किनारे से टकरा कर लौट तो जाती है लेकिन हार कर नहीं, वे फिर जाती है, फिर कोशिश करती है। शायद इसी में जीवन का सबसे सुंदर संदेश छिपा है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज विश्व महासागर दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और उज्जवल भविष्य की नींव है। बढ़ते प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें समुद्रों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है कि ऐसी चीज़ों का उपयोग हम कम करें या ना करें जिनसे ये जो जलाशय हैं हमारे ये प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाएं तो प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा और गंदगी वहाँ पर फेंक करके ना जाए, क्योंकि दूसरे भी तो सैलानी वहाँ आने वाले हैं ना देखने के लिए, और वो जब देखेंगे इस गंदगी को तो उन्हें फिर कहाँ आनंद आएगा। और वैसे भी इन चीज़ों से, प्लास्टिक से या गंदगी से, वो जलाशय जब गंदे होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या देखेंगे, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या देख पाएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर ये गंदे हो गए तो ये हमारे दिल को बहला नहीं पाएंगे। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद का।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना दिलीप कुमार पर यह गाना फिल्माया गया है। एक हमारे साथी की बात है कि समुद्र, सागर या फिर महासागर मनुष्य की जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये मात्र विशाल जलराशि का स्रोत नहीं है बल्कि असीम धैर्य, स्थिरता और जीवन चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। सागर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हो, सागर की गहराई उतनी ही शांत और गंभीर होती है, जो एक संदेश देती है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो, जीवन का उतार चढ़ाव में संयम और धैर्य रखें, मन को विचलित न होने दें। समुद्र के सामने मनुष्य का अस्तित्व उसकी एक बूंद के बराबर है। समुद्र की विशालता हमें अहंकार मुक्त होकर प्रकृति के प्रति विनम्र रहने की प्रेरणा देती है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नीले जल में छिपे हैं कितने अनकहे राज, लहरों की जुबां पर बस प्रकृति का साज। शाम ढले जब सूरज समंदर में खो जाता है, हर कतरा तब प्रेम का दीप जलाता है। सीप की खामोशी में मोती का जन्म होता है, दर्द सहकर भी जीवन अनुपम कर्म होता है। मन के वेग को थाम लेती है ये लहरें, जैसे माँ की गोद में सो जाए सारी दहशतें। समुद्र कहता है बहते रहो, ठहरना मत, सपनों की राह में कभी बिखरना मत। प्रकृति का अटूट समर्पण यही कहता है, जो प्रेम में डूबा हो वही मोती बन पाता है। धन्यवाद आपका। और अब प्यार का सागर, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए हमें।

राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, ये गाना अभी हमने आपको सुनवाया। एक साथी की ये बात है कि जब हम सागर के किनारे अपने पैर डालकर बैठे हैं तो वहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, आती जाती लहर को हम देख रहे थे, मानो वो हमसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, कुछ बताना चाह रही हो। हम सुनना चाहते थे उनकी बातें, कुछ सुनी, हर जाती लहर मानो हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ दूर, बहुत दूर ले जा रही हो, और आती लहर हमें अनगिनत खुशियां दे रही हो। बस फिर क्या, हमारी नटखट सी परी ने कहा, नानी उठो, हम दोनों इसमें पत्थर फेंकेंगे, और हमारी बातें अधूरी रह गई। हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे समुद्र से। एक साथी लिख रहे हैं कि सागर की आती जाती लहरें हमें ये संदेश देती है कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियों की लहर आती, कभी चुनौतियों की। लेकिन जैसे लहरें बार बार किनारे पर पहुंचने का प्रयास करती है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार कर लौटना नहीं, बल्कि फिर से उठकर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे सुंदर सीख है। चलिए अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं, तकदीर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ और साथ में कुछ और भी आवाज़ें हैं, सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और ईला देसाई की इसमें आवाज़ें हैं, और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है ये, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत कि जब हमारे घर के कोई व्यक्ति सात समंदर पार जाते हैं तो हम क्या उम्मीद रखते हैं, यही ना कि चाहे जो भी हो, बस आप सुरक्षित घर लौट आइए, घर लौट आइए।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सागर किनारे जो शाम होती है वो प्रकृति में सबसे मनमोहक और सुरमई सा रूप लेते हुए मनुष्य में एक कौतूहल उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इस समय सागर में उठने वाली लहरें मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, विरह और शांति को बहुत ही मनोयोग से बयां करती है। ढलती हुई शाम को सूर्य जब लालिमा बिखेरता है और सागर में उठती लहरों से किरणें आर पार गुजरती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सागर का 16 श्रृंगार कर दिया है। साथ ही नीला आसमां भी लालिमा बिखेरता है जो एक मनमोहक दृश्य बना देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है बल्कि प्रकृति की अनंत भावनाओं का प्रतीक भी है। इसकी अथाह गहराइयां हमें जीवन के रहस्यों का एहसास कराती है जबकि इसकी लहरें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। महासागर प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो अपनी सुंदरता, शक्ति और शांति से हर हृदय को छू लेता है। धन्यवाद आपका। और अब मजेदार फिल्म का गाना एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

एक साथी लिखते हैं कि कुछ बातें गीतों की तरह होती है, जितना सुनो उतनी ही अच्छी लगती है, और कुछ रिश्ते लहरों की तरह जो दूर रहकर भी मन के किनारों को छूते रहते हैं। कुछ गीत भी ऐसे होते हैं जो मन के किनारों को छूते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना संकल्प फिल्म का गाना, कैफी आज़मी के बोल, संगीत खय्याम का, आवाज़ किसकी है बताइए हमें।

जी हाँ, इन सागरों की गहराई को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आज जिधर भी नजर जाती है सब दौड़ रहे हैं धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। इस अंधी दौड़ में हमारा सुख चैन कहीं खो गया है। न जाने कितने लोग इस रैट रेस के कारण अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बलि चढ़ा देते हैं। सारा धन और वैभव हमें मानसिक शांति नहीं पहुंचा सकता, इसके लिए तो संतोष रूपी धन की आवश्यकता होती है। सब कुछ झटपट पा लेने की बजाय संतोष के साथ थोड़ा थोड़ा संचय ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए।

कई बार हम देखते हैं कि रहने वाले तो एक दो ही हैं और कई कमरों का मकान है, आभूषण और धन इकट्ठा करने की मानो होड़ सी लगी है। सोचकर देखिएगा, हमारी आवश्यकता तो बेहद कम होती है और बाकी संचय तो हमारे ईगो को तुष्ट करने के लिए ही होता है, है ना? और इस चक्कर में हमारा जीवन पिसता रहता है। अगर हम संतोष धन को अपना लें तो हमारा परिवार सुखी परिवार लगेगा और अपना छोटा सा घर भी मानो सोने के महल जैसा मालूम होगा।

0: भारत ऋषियों मुनियों का देश रहा है। यहाँ त्याग और संतोष को महान गुण माना गया है। इन गुणों को हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में मानो भूलते से जा रहे हैं। आज आवश्यकता है सहज रूप से जीवन यापन की, मस्त मौला होकर बेफिक्र अंदाज में जीने की। संतोषी व्यक्ति अपने आप में, अपने अंतर्मन में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता है।
1: मैं हूँ झुमझुम।

ஜூடுடே.

तो दोस्तों, जीवन में संतोष हमारे मन को शांत रखता है और हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है, हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मधुर बनाता है। तभी तो कहते हैं, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
1: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

0: फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saklain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: Sansadiye aur Alpasankhyak Karyamantri Kiran Rijiju ne video sandesh mein Akashvani

0: आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूँ। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय सेवा, देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आज और कल। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ये बंदिनी फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ये सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में है, बी डी मिश्रा ने लिखा है, एस एन त्रिपाठी का संगीत है और फिल्म का नाम

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कैप्टन शेरू। इस फिल्म का ये गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, नक्श लायलपुरी के बोल और संगीत है एस मोहिंदर का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है, तो हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे
1: हैं। और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
2: बिल्कुल।
1: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़कर आती हैं और क्या लेकर आती हैं?
2: देखिए हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी, वो अक्सर आप जहाँ पैर रखेंगे दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा, तो ये सावधानी हमें
1: बिल्कुल
2: बताई थी।
1: ये कहा जाता है ना कि आग पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खास तौर से समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं, तो यहाँ का मालूम है यहाँ के निवासियों को, और इतना गहरा भी नहीं है समंदर यहाँ का। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज्यादा है और जो बहुत इंटीरियर बीच है, वहां जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाएं और कहीं पर रेत धसकती है। और कुछ ऐसे जगह खास तौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली, जहां पर हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहां पर पैर रखिए तो आप एक जरा सा कुछ सेकंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है इतना तक। और कई बार गाड़ियां वहां पार्क की जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहाँ जहाँ जा रहे हैं पहले वहाँ के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहाँ पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या कहेंगी?
2: क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीज़ें ले जाते हैं या वहाँ से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज़ जैसी चीज़ होती है या आपने दोने में कोई चीज़ खाई है तो वो सब वहीं पर छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाते हैं जो उसको दूषित कर देता है पानी
1: और आपको वापस देता भी है,
2: वापस पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है।
1: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा।
2: हाँ,
1: मतलब समंदर ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है,
2: संदेश देता
1: तो
2: है।
1: ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा या कुछ भी आ गया तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो नहीं आ गई।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे जैसा वो उसके साथ करेंगे वो भी वापस जवाब देता है, तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए खाइए पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में पैकेट में झोले में रख के ले आइए अपने घर में आसपास जो आपका कचरा दान है उसमें डालिए, या वहाँ पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए, वहाँ समुद्र के वातावरण को उसके किनारे को उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करें।
1: और बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुंबई में भी खास तौर से एक बीच है अक्सा बीच जो कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है तो वहाँ पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है। और उस वहाँ पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है ज़िंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें बजाय ये लिखने की कि हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुंचाएंगे। अब क्या करें, हम
2: अब गीत सुना दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं गाना।

0: तो ममता जी हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विविध भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजे। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस
1: पर वो हमने बताई
0: दिया है। और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोलिए क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। तो जब बोले तो सोच समझ के। फिलहाल ये गाना सुने।

0: लचक उठी काया के दिल में।
1: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण, इसका भाग दो।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
4: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधु को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
3: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
4: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे। उसे बलात् निकाल देना चाहते थे। किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय ना कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते फिर हाँप कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
2: क्या बात है,
1: मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली।
0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
3: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या, लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग रंग, आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। साहब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं।
0: अंत को न रहा गया, जनान खाने में आकर बोले,
3: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
4: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
3: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
4: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
3: फजूल की मचमच।
4: तुमसे मतलब?
3: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
4: तो मेरा घर कहीं और है।
3: इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
4: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
3: ओहो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
4: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
3: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
4: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
3: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से

0: आती हो, मेरा यह मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
1: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
2: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ताका।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहाँ है?
2: मैके कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहाँ जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में।

अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय पीड़ा, असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल वेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यही मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मछली तो वहाँ पर मिलती ही मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है हम सब
1: बिल्कुल ईंधन का साधन है। और व्यापार, पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में, प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
0: बिल्कुल। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान हैं। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
1: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती है, ऐसा लगता है वो दृश्य।
0: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांध दी और नूपुर बज उठते हैं। उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी सखियां बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
1: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर है। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरते देखे तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा हैं ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीज़ें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएँ तो वहाँ स्वच्छता साफ़ सफाई ज़रूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी अपनी जड़ों को, ज़मीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
1: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
0: शुक्रिया मंजरी जी, लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
1: जी,
0: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के

0: ध्यान देना चाहिए।
1: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को, एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार, और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है, बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारी ऑक्सीजन को हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए, सागर जो हमें अपार सहनशीलता या दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है, बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो।
1: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देव बर्मन ने संगीत दिया। फिल्म बारूद।

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: देखिए ना, कुछ कहने वाले
0: हैं, आपने मुझे बोल ही नहीं दी, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से,
1: तपाक से
0: मतलब ये तपाक से बोलना हुआ,
1: तपाक से बोलना हुआ।
0: लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसे बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं, कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया।
1: लेकिन
0: आप घबरा गई।
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी, हाँ। कि मतलब वो
0: अच्छी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं, ये ऐसा था।
1: बिल्कुल। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है, मतलब है कहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए, कहाँ बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं। कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी। और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं, जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ। भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से।
1: बिल्कुल।
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो। तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को पर वार करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुपते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोलें जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए। पहले तोलें फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है। इन्होंने ये बात लिख करके।
0: और हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलत फहमी, विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है, जहाँ लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन, रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो, मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी, अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में ना काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से, कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं। तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए एक दूसरे को काट कर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
1: देखिए, एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे। ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है लेकिन प्रायः महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है पड़ोसी की
0: काफी विश्लेषण किया है इन्होंने।
1: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ। कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है, अब नहीं तो कहकर सर मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
0: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट फटाफट
1: तपाक से
0: ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
1: सही बात
0: तो ये क्या वजह है? हमें लगता है कि
1: बड़े बैठे होते होंगे इसलिए बोल जाते होंगे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती हैं?
1: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं।

0: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम कल
1: ही कहना पड़ेगा
0: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से जी। तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज।
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी।
0: तो ये रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
1: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
0: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
1: अभी तो
0: सिर्फ बनाया नहीं जाता है।
1: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे, आपकी आंखों की जो चमक थी वो मैं समझ गई थी।
0: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही हैं?
1: आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं। इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी। आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए, और हरी मिर्च बारी कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, और 1 छोटा चम्मच अमचूर, और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। अब आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए, और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो आटा साना है उससे लोइयां बनाइए, उसमें आलू का भ्रावन भरिए, और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हाथ हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाएगी।
0: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
1: बिल्कुल ये टाली भी नहीं जाएगी।
0: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ, और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1 छोटे चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकाल कर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें, अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें, अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें, इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
1: जी।
0: और अब ये गाना सुनें।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज़ थी। और अब घड़ी की ओर ज़रा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूँ और उनको मेरे विचार पहुँचा सकता हूँ और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह, कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलाइटिस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और या बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह डायबिटीज इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफ़ी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज़ होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
0: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वे किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
1: डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडिमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
0: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नज़रिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
1: टाइप वन के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफ़ी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है।
0: ओहो,
1: इतना ज्यादा शुगर होता है।
0: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
1: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
0: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो, कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज़्यादा खा लिया है तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
1: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा, बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत ज़रूरी है।
0: जी हाँ भाई, देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप
1: श्रोताओं को। मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज़ ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
0: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप टू मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज़ के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज़ हो सकता है, या बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज़ का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज़्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का इंडिकेटर है, और अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है।
0: अच्छा, सपोज़ पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज़ नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज़ का इंडिकेटर मिलता है, और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज़ का मरीज़ ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है, तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है, बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का BP बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इस को OPD बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है, क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है, ये आप देखते हैं, पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ रहा है। कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें, जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या है, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
1: right, वो दूर हो जाता टेंशन है।
0: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
1: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा जो मेरे एमडी के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा।
0: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज़ होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, इसकी कोई उम्र नहीं है। 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज़ है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन्स देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके।
0: हाँ,
1: तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फ़र्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहाँ पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज़ की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज़ की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वज़न बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज़ इट्सेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा, जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो

0: बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
1: जरूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज हो। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफ़ी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता?
1: टाइप 1 डायबिटीज में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए, मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज़ है कि नहीं। बट अगर बच्चा है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज होता है उसमें इंसुलिन इज द लास्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन दवाइयां मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
1: जी सही बात है, इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा। बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं।
0: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दुर्बलता आती है?
1: डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
0: अच्छा, ऐसे कोई मरीज़ आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज़ हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
1: डायबिटीज़ जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दे, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खोखो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशन है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज़ की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज़ हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली हैं।
0: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
1: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे जमीन पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा।
0: बहुत ही, इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे जमीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज़ हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज़ के लिए प्रोन है। ज़रूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज़ होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज़ नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज़्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज़ होने की। आजकल जो उससे ज़्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज़ है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज़ जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज़ को डायबिटीज़ हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको, कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है।
1: डायबिटीज़ में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज़ है तो सभी बच्चों को डायबिटीज़ होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज़ नहीं हो।
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं, तभी इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
1: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ, ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है, ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी स्टडीज़ है जो बताती है कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो, बीच में जो दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो
0: जी।
1: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज़ के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी, काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
0: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए
1: जी। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफ़ी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर
0: जी।
1: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है, और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज़ होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज़ जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहाँ जाऊँ तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहाँ पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोती बिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज़ से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं, इतना गंभीर रूप से डायबिटीज़ का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज़ का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में। स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
0: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पगतलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
1: डायबिटीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में ज़ख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये ज़ख्म बढ़ता जाता है, और डायबिटीज़ के जो मरीज़ है ये काफ़ी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं। इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए, और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुटवेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पूटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
0: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं, या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
1: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज़ फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज़ नहीं पहने, और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
0: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
1: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँगा।

0: में जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज़ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस्ड डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज़ के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है, इनमें बहुत ही कम होती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम ख़त्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज़ है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के, उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोंड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाद्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए और तली हुई चीज़ें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज़्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यस, आप डायबिटीज़ की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ होने की संभावना है।
0: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
1: यस।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री, तो व्हाट इज शुगर फ्री?
1: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकरिन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं बट इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल, शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए, ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं लें, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज़ कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
0: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
1: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूँगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।
0: आइए सुनते हैं।

0: साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुनें तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थीं और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। डीजी अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, प्रेमनगर, कोल्हुआ, नवा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चराईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 41 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, करोंधा, जगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 96 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, कशडोल, बुलेकेरा, चिमटा पानी, गया, कटाई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासुल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। किसी भी परिस्थितियों में हाथियों का खेदा करने बिल्कुल ना जाएं। हाथियों से सावधानी बनाए रखें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का। अब से थोड़ी देर बाद 5:10 पर आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम शाम गजल। युवा श्रोता कार्यक्रम युवाणी सुन सकते हैं शाम 5:30 पर। युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय है जैव विविधताओं का संसार महासागर। चर्चा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे डिजिटल सेवा की ओर अग्रसर भारत, इसके साथ ही सुनेगा क्रम तुम याद आए। फिल्म संगीत का वक्त होगा शाम 6:20 और शाम 7:00 का। किसान भाई कार्यक्रम चौपाल सुनेंगे शाम 7:20 पर। चौपाल में आज की बात का विषय है छत पर बागवानी, समय की मांग। आज की नसीहत में सुनिएगा दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार प्रबंधन। साथ ही आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 8:20 पर। 8:30 का वक्त होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे रात्रि 9:00 से और 9:25 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर किसान सशक्तिकरण थीम पर विशेष कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। विविध संगीत हम पेश करेंगे रात्रि 10:00। ये थे हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
4: आकाशवाणी @90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।

आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए पेश है कार्यक्रम शामे गजल। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुने गालिब की लिखी गजल लता मंगेशकर की आवाज में।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: शाम गजल कार्यक्रम में आइए अब सुने अंदलीब शादानी की लिखी गजल, आवाज है जगजीत सिंह की।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही शामी गजल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है, आइए अब सुने युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और आज के युवाणी कार्यक्रम की होस्ट रिशा यादव। कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोता साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम समुद्र का नाम सुनते हैं, हमारे मन में नीले पानी की अनंत चादर, किनारों से टकराती लहरें, ठंडी हवाएं और सूरज की सुनहरी किरणों से चमकता हुआ समुद्र दृश्य उभर आता है। लेकिन दोस्तों, समुद्र की खूबसूरती सिर्फ उसी में ही नहीं बल्कि उसके भीतर छिपी उस अद्भुत दुनिया में भी है, जिसे हम बाहर से तो नहीं देख पाते पर हम सब ने मोबाइल या टीवी में ज़रूर देखा है। समुद्र के अंदर रंग बिरंगी मछलियाँ, चमकदार कोरल रीफ, विशाल व्हेल, चंचल डॉल्फिन, समुद्री कछुए, प्लवक, बैक्टीरिया और सूक्ष्म शैवाल, समुद्री घास, केल्प, विभिन्न प्रकार की शैवाल, इगुआना, ऑक्टोपस, स्कीवर्ड, जेलीफिश, स्टारफिश, सी अर्चिन, केकड़े, झींगे, सीप, घोंगे, एंगलर फिश जैसे लाखों प्रकार के जीव समुद्र में रहते हैं। महासागर में जैव विविधता की बहुत बड़ी और अद्भुत दुनिया पाई जाती है। इसमें सूक्ष्म जीवों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े जीव तक शामिल हैं। ऐसा लगता है मानो समुद्र के भीतर भी एक अलग संसार बसा हुआ है, जो रहस्यों, रंगों और जीवन से भरा हुआ है। यही जीव जंतु और समुद्री पौधे मिलकर महासागर की जैव विविधता का निर्माण करते हैं। दोस्तों, महासागर की ये जैव विविधता सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है बल्कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्र में मौजूद सूक्ष्म पौधों द्वारा ऑक्सीजन बनाया जाता है। समुद्र पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखता है। समुद्री जीव और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में मदद करते हैं, जिससे जलवायु संतुलित रहती है। अगर ये जैव विविधता कम हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर हो सकती है। कई दवाइयाँ, लाखों लोगों की आजीविका समुद्र पर निर्भर करती है। समुद्र सिर्फ प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि जीवन का एक मजबूत आधार भी है। अगर महासागर में जैव विविधता ना हो तो समुद्र सिर्फ पानी का एक विशाल भंडार बनकर रह जाएगा। समुद्री जीवों की संख्या कम होने लगेगी तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा और खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। धीरे धीरे इसका असर मनुष्यों तक भी पहुंचेगा। मछलियों पर निर्भर लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर हो सकती है। पर्यावरण का संतुलन कमजोर पड़ सकता है। इसलिए समुद्री जैव विविधता का संरक्षण सिर्फ समुद्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण और हम मानवों के लिए भी जरूरी है। लेकिन हम मानव जाने अनजाने में अपनी गतिविधियों से इस सुंदर संसार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक का कचरा समुद्र तक पहुंच रहा है। कांच, अलग अलग धातु की वस्तुएं, तार जो जलीय जीवों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है। जलीय जीव कई बार इनमें फंस जाते हैं और तड़प कर जान गंवा देते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषित पानी समुद्री जीवन को प्रभावित कर रहा है और खाने के पर्पस से कई प्रजातियों को पकड़ा जाता है, जिससे कई प्रजातियां आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का असर भी समुद्री जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों पर पड़ रहा है। जिस समुद्र को हम उसकी सुंदरता के लिए पसंद करते हैं, उसी खूबसूरती को हम नुकसान पहुँचा रहे हैं। दोस्तों, हम युवा हैं, हमें ये समझना होगा कि समुद्री जैव विविधताओं को का संरक्षण पर्यावरण के लिए कितना ज़रूरी है। ये पृथ्वी जितनी हम मानवों के लिए है, उतनी ही उन जैव विविधताओं के लिए भी है। अगर हम चाहें तो हम समुद्री जैव विविधताओं का संरक्षण कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का हम उपयोग कम करके, कचरे का सही प्रबंधन करके, जल स्रोतों को स्वच्छ रखकर और पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर हम महासागरीय जीवों की रक्षा कर सकते हैं। इसमें हम सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जब हर व्यक्ति ये समझेगा कि समुद्र सिर्फ प्रकृति की संपत्ति नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है, तब संरक्षण के प्रयास और अधिक प्रभावी होंगे। दोस्तों, महासागर के महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष
विश्व भर में 8 जून यानी आज ही के दिन विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को पहली बार 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन ने आधिकारिक रूप से 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया। प्रतिवर्ष इस दिवस की थीम होती है। इस वर्ष की थीम है पुनर्कल्पना। हम जिस दुनिया को जानते हैं उससे परे हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध। दोस्तों, महासागरों की जैव विविधता को बचाने का लाभ सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा। इससे पर्यावरण स्वच्छ और संतुलित रहेगा, जलवायु बेहतर बनी रहेगी, समुद्री जीव सुरक्षित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले सकेंगी। इसलिए हमें समुद्र को सिर्फ एक पर्यटन स्थल या पानी का विशाल क्षेत्र नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे जीवन देने वाले एक अनमोल खजाने के रूप में देखना चाहिए। समुद्र की खूबसूरती उसके भीतर बसने वाली अद्भुत जैव विविधता पर निर्भर करती है और हमारा कर्तव्य है कि हम इन्हें नुकसान ना पहुँचाएँ और इनका संरक्षण करें। दोस्तों, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं आज के चर्चा में और जानते हैं डिजी लॉकर ऐप के बारे में। दोस्तों, डिजी लॉकर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट है। यानी ये इंटरनेट पर मौजूद आपकी एक तिजोरी है जहाँ आप अपने सभी ज़रूरी सरकारी और निजी कागजात सुरक्षित रख सकते हैं। डिजी लॉकर भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य कागज रहित शासन है। ये एक सुरक्षित क्लाउड आधारित डिजिटल वॉलेट है जहां नागरिक अपने सभी आधिकारिक दस्तावेज जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और मार्कशीट जैसे ज़रूरी दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं और कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

दोस्तों डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर में जाकर डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, ऐप खोलें, गेट स्टार्टेड पर टैप करें और क्रिएट अकाउंट चुनें। विवरण दर्ज करें, अपना नाम जो आधार पर हो, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और 6 अंक की सुरक्षा पिन सेट करें। आधार लिंक करें, अंत में अपना आधार नंबर दर्ज करें और अपने मोबाइल पर आए OTP के माध्यम से अकाउंट को वेरीफाई करें। जारी किए गए दस्तावेज, इशूड डॉक्यूमेंट्स, ये सेक्शन सीधे सरकारी विभागों जैसे CBCE, परिवहन विभाग, UIDAI से आपके डिजिटल दस्तावेज भेज करता है। यहाँ से आप अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, RC और पैन कार्ड सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप अपने अन्य दस्तावेजों जैसे बिजली का बिल या मेडिकल रिपोर्ट को PDF या JPEG फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर के कई फायदे हैं, जैसे आपको अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस या मार्कशीट की ओरिजिनल हार्ड कॉपी लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंट्स के खो जाने का डर। डिजिटल लॉकर में उपलब्ध दस्तावेज कानूनी रूप से मूल दस्तावेजों के समान ही मान्य होते हैं। आप सरकारी योजनाओं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं समय या पुलिस द्वारा मांगे जाने पर सीधे ऐप से अपने दस्तावेज साझा और सत्यापित कर सकते हैं। तुरंत शेयरिंग, समय और पैसे की बचत, और ये 100% वैध है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नियम 9A के तहत डिजी लॉकर ऐप में दिखाए गए इशूड दस्तावेजों को मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर ही कानूनी मान्यता प्राप्त है। ये पूरी तरह से सुरक्षित भी है। ये सीधे आपके आधार नंबर और मोबाइल OTP वन टाइम पासवर्ड से लिंक होता है, इसलिए आपके अलावा कोई और इसे नहीं खोल सकता। दोस्तों डिजी लॉकर दस्तावेजों को रखने का एक सुरक्षित व यूजफुल माध्यम है, इसे ज़रूर प्रयोग में लाएं और डिजिटल इंडिया में अपना भागीदारी दें। दोस्तों आज की चर्चा में बस इतना ही। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं आज के क्रम में, क्रम तुम याद आए में, और ऐसे अभिनेता के बारे में आज बात करेंगे जो हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक थे, जिन्हें 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के बारे में। आगे इनके बारे में और भी जानेंगे, इससे पहले सुनते हैं उन पर फिल्माया हुआ फिल्म हाथ की सफाई का ये गीत। लता और रफ़ी की आवाज़ों में गीतकार हैं गुलशन बावरा व संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था। उनके पिता किशन चंद खन्ना एक बड़े व्यवसायी थे व उनकी माता कमला खन्ना एक कुशल गृहिणी थी। भारत के विभाजन के समय उनका परिवार पेशावर में से आकर मुंबई में बस गया था और उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही की। विनोद खन्ना के फिल्मी करियर की शुरुआत काफ़ी अनोखी और दिलचस्प रही है। बॉलीवुड के अन्य अभिनेताओं के विपरीत उन्होंने अपने सफल करियर की शुरुआत एक हीरो के रूप में नहीं बल्कि एक विलेन के रूप में की थी। उनकी पहली फिल्म मन का मीत 1968 में आई थी। दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त ने विनोद खन्ना की शानदार कद काठी और दमदार लुक को देखकर उन्हें अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में कास्ट किया था। इस फिल्म में सुनील दत्त के भाई सोम दत्त मुख्य अभिनेता थे, जबकि विनोद खन्ना को मुख्य विलन का रोल मिला था। विलन होने के बावजूद दर्शकों ने उनके अभिनय को बेहद पसंद किया। मन की मीत की सफलता के बाद विनोद खन्ना को कई फिल्मों में सहायक अभिनेता या विलन के किरदार मिले, जिनमें उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो साजन, मस्ताना जैसे फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। मेरा गांव मेरा देश फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया डाकू जब्बार सिंह का विलन किरदार ऐतिहासिक साबित हुआ, जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान दिलाई। दोस्तों, आगे और भी बातें करेंगे, उससे पहले सुनते हैं विनोद खन्ना पर फिल्माया फिल्म जुर्म का ये गीत। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में गीतकार हैं इंदिवर व संगीतकार हैं राजेश रोशन।

दोस्तों, एक बार विलन की छवि बन जाने के बाद बॉलीवुड में हीरो बनना बहुत मुश्किल माना जाता था, लेकिन विनोद खन्ना ने इस चलन को बदल दिया। लीड हीरो के तौर पर उनकी पहली फिल्म हम तुम और वो थी मेरे अपने फिल्म किया। इसके बाद उन्होंने अचानक, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर खुद को बॉलीवुड के टॉप अभिनेताओं में शामिल कर लिया। अभी अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाने लगा। दोस्तों, 1982 में जब वे सफलता के शिखर पर थे, तब उन्होंने अचानक से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और अध्यात्म की ओर चले गए। उसके बाद 5 साल के बाद 1987 में उन्होंने कमबैक कर इंसाफ और सत्यमेव जयते जैसी हिट फिल्में दी। वे राजनीति में भी आगे रहे हैं। वे पंजाब की गुरदासपुर सीट से 4 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे संस्कृति और पर्यटन मंत्री तथा बाद में विदेश राज्य मंत्री भी रहे। दोस्तों, आइए सुनते हैं विनोद खन्ना पर फिल्माया इम्तिहान फिल्म का ये गीत किशोर की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरू व संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दोस्तों, विनोद खन्ना को उनके शानदार फिल्मी करियर और भारतीय सिनेमा में बहुमूल्य योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म हाथ की सफाई के लिए, 1975 में वे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1999 में और स्टार डस्ट रोल मॉडल ऑफ द ईयर 2005 में जी सीन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2007 में पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2014 में से नवाजा जा चुका है। इन महान अभिनेता की मृत्यु 27 अप्रैल 2017 में 70 वर्ष की आयु में हुई। ये आज हमारे बीच नहीं रहे, पर इनका हिंदी सिनेमा के लिए इनका अमूल्य योगदान हमेशा के लिए यादगार रहेगा व हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। इस तरह हम इन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। दोस्तों, क्रम तुम याद आए यहीं समाप्त होता है। अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का। अपनी रेडियो दोस्त ऋषा यादव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: युवाणी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: गश्ती दल के अग्रणी थे जब उनका गश्ती दल...

0: था, जहां इन्होंने प्राइमरी मिशन कर्मी दल के सदस्यों के साथ अत्याधुनिक मिशन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके प्रशिक्षण में जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस, स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण वीरता के लिए एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर।
1: Proud family, with a round of applause, proudly receiving the Kirti Chakra. This is Group Captain Prashant Balakrishnan Nair, Flying Captain, Flying Pilot from the Indian Air Force.
0: Captain Lalrin Omar Silo, Parachute Regiment.
2: और अब विशेष दल चार पैराशूट के कैप्टन लाला रिनाउ साइलो आमंत्रित किए गए हैं कीर्ति चक्र के लिए।
0: कैप्टन साइलो को श्रीनगर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। मिनी आरपीवी द्वारा आपने खतरे का विश्लेषण किया और स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी के एक आतंकवादी की पहचान की। रणनीतिक संयमता दिखाते हुए आपने आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप भीषण गोलाबारी के बीच आगे बढ़े और एक खूंखार आतंकवादी को नस्ती की मुठभेड़ में मार गिराया। निर्भीकता साहस का प्रदर्शन करते हुए आपने बाकी आतंकवादियों को भी निष्प्रभावी कर दिया। युद्ध कुशलता, अद्भुत बुद्धिमत्ता और स्पेशल फोर्सेस की निपुणता का प्रदर्शन करने के लिए कैप्टन लालरिन ओमा साइलो को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन लालरिन ओमा साइलो।
2: तालियों की कहता है के बीच राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए कैप्टन

0: ti tú chatas esa marica de arajo, que pensaba.
1: Ab, Shauri Chakra, Manu Parant Pratan Kia Jaika, Lance Tafadar, Baldeep Chand, Amat Kaur, Chauthi Battalion, Rashtri Rifles, Manu Parant.
2: And now, Shauri Chakra posthumously, a very poignant moment. The first Chakra, Shauri Chakra going to Lance Dafedar Baldev Chand from the Armored Corps, coming forward to receive his wife and mother.
1: Lance Dafedar Baldev Chand, 19 September 2025 ko Kashmir mein chalaye gaye aatank virodhi abhiyan ka hissa the. Sashastra aatankiyon dwara achanak kiye gaye pranghatak hamle ke beech ghire apne saathiyon ki raksha ke liye aap hathiyarband aatanki par akele toot pade. Apne pranon ki parwah na karte hue भीषण हाथापाई के बाद इस शूरवीर सैनिक ने आतंकी से विदेश निर्मित पिस्तौल छीनकर अपने कई साथियों की जान बचाई एवं अपने दल को पुनर्गठित किया. सीने में गोली लगने से घायल होने के बावजूद आप आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए. इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस हवलदार बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है. सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवानी रनौत तथा उनकी पूज्य माता श्रीमती विजय कुमारी.
2: Our honorable president walking towards the martyr's wife and mother to present the Shauri Chakra posthumously to Lance Dafedar Baldev Chand. Hearts are heavy and overwhelming feeling, but our martyr leaves the family, the near and dear ones, with pride and honor.
1: अब वीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे. उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत, कांस्टेबल दीपक चिंगाखम सीमा सुरक्षा बल.
3: आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है. श्रोताओं, हम आपको हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें. अब थोड़ी देर बाद 6:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम. फिल्म संगीत एक बार सुनिएगा शाम 7:00. किसान हम प्रसारित करेंगे शाम 7:20 पर. छत पर बागवानी, समय की मांग. आज की नसीहत में आप सुनेंगे दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार प्रबंधन. कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम. रात्रि 8:20 पर 8:30 का वक्त होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का. कि दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे सरकार पूर्ण होने पर किसान सशक्तिकरण थीम पर विशेष कार्यक्रम. रात्रि 10:00 हमारे केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम विविध संगीत और 10:20 का वक्त होगा फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध का. ये था कार्यक्रम विवरण. हमारे प्रसारित और अनुसंधित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का.
4: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती. अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन. आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़. तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है. संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़. श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं. आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं. कार्यक्रम आपकी फरमाइश अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: एफएम बैंड पर वाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार, प्रधानमंत्री ह गरीब मन के हित में सरकार के 12 बछर के विकास यात्रा ला करे हे रेखांकित। गरीब कल्याण और वंचित वर्ग मन ला ए बदलाव के केंद्र बिंदु में राखे गिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मन ला दिन वीरता पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के 3 झीन जवान घलो शामिल। और मौसम विभाग हवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदार हवा गरेर के संग वर्षा होए के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह गरीब मन के हित में सरकार के 12 बछर के विकास यात्रा ला रेखांकित करे हे। प्रधानमंत्री ह आज गिन कि ये दौरान देश ह कतकोन बदलाव के साक्षी बने के संगे संग गरीब कल्याण और वंचित वर्ग मन ला ए बदलाव के केंद्र बिंदु में राखे गए हे। उमन किहिन की अंत्योदय जम्मू बेरा सरकार बर प्रेरणा स्रोत रहीस और प्रयास रहीस कि विकास के फायदा पाछू छूटे लोगन मन तक पहुंचे। प्रधानमंत्री हकीन की जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसन हर पहल के उद्देश्य लोगन मन बर गरिमा और मौका देवाना हवे। प्रधानमंत्री हकीन कि गरीब और वंचित मन के उत्थान के संकल्प सबका साथ सबका विकास के मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब के सेवा ओकर जिंदगी में बेहतरी के संगे संग देश के विकास, यही सब सरकार के सबले बड़का प्राथमिकता रहीस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मन ला वीरता पुरस्कार दिन। एमा छत्तीसगढ़ के 3 झीन जवान घलो शामिल है। असम राइफल में पदस्थ जवान भोजराम साहू ला मणिपुर में आतंकी मन के संग मुठभेड़ में साहस और वीरता पर शौर्य चक्र ले सम्मानित करेगी। तो उन्हें छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान के दौरान बड़का भूमिका निभैया पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख ला घलो शौर्य चक्र ले सम्मानित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 21 जून के हुवैया नीट यूजी पुनर्परीक्षा पर परीक्षा मन के शहर के सूचना जारी कर दे है। पंजीकृत उम्मीदवार मन आधिकारिक वेबसाइट में लॉगिन करके अपन परीक्षा शहर के जानबा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 बछर पूरा होए के मौका में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय काली ले राष्ट्रव्यापी समारोह के शुरुआत करी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन समारोह के अध्यक्षता करी। ए मौका में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मन में जागरूकता और जनसंपर्क अभियान चलाए जाही। जानबा के मुताबिक प्रधानमंत्री 9 जून 2016 के ए अभियान के शुभारंभ करे रहीन। एमा गर्भवती माई लोगिन मल्ला मुफत में स्वास्थ्य सेवा दे जाते। देश के विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपन 90 बछर पूरा होए के उत्सव मनावत है। बछर 1936 में आजे के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस के नाव बदल के ऑल इंडिया रेडियो रखे रहीस। बछर 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के नावला बदल के आकाशवाणी करेगी। आकाशवाणी आज 591 रेलवे स्टेशन मन के संचालन करत है। समाचार एक बार सुन लो। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशन मन के संचालन करे थे। आकाशवाणी के प्रसारण 23 ठिन भाषा और 146 बोली में करे जाते। आकाशवाणी के ध्येय वाक्य हवय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के मौका में रायपुर में आज विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम हुई। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के 8 गैलरी में एक विशेष प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेख मन के छायाचित्र दिखाएगी। प्रदर्शनी रोजे बिहनिया 11 बजे ले संझा 5 बजे तक आम लोगन मन पर खुला रही। तो उन्हें 9 जून के अभिलेख मन के संरक्षण और ओखर महत्ता ऊपर विशेष व्याख्यान राखे गए है। कार्यक्रम के उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहर मल्ला सहेज के राखे के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। प्रदर्शनी 12 जून तक चली। संस्कृति विभाग डहर ले सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर में आज ले आकार 2026 पारंपरिक और शिल्प और कला शिविर आयोजित करे जाते। 14 जून तक चलैया इस शिविर में युवा मल्ला 14 ठिन पारंपरिक कला विधा के प्रशिक्षण दे जाही, जेकर उद्देश्य लोक कला और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के संग नवा पीढ़ी मल्ला सांस्कृतिक विरासत ले जोड़ना है। प्रशिक्षण अनुभवी कलाकार और कला गुरु मन डहर ले दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़बो बाजे समाचार को थी। धमतरी पुलिस ने 480 किलो गांजा के संग 5 जिन तस्कर मल्ला गिरफ्तार करे है। जब्त गांजा के कीमत 2,45,00,000 रुपया ले ज्यादा के बताए जाते। पुलिस के मुताबिक मुखबिर ले सूचना मिले के बाद बस्तर ले रायपुर आवत एक ठिन कार और पिकअप गाड़ी के जांच करेगी। इस दौरान एक गाड़ी मन में अब्बड़ मात्रा में सफेद बोरी में ले जात गांजा बरामद करेगी। पुलिस बताइन की आरोपी मन गांजा ला रायपुर और उत्तर प्रदेश में बेचे बर ले जात रहीन। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में हाथी के हमला में 2 जिन लोगों के मौत हो गए है। मिले जानबा के मुताबिक गुरु घासीदास तमोर पिंगला रायगढ़ रिजर्व के देवसील गांव में रद्दा बनाए के काम चलत रहीस। पाछू रतिहा ए मजूर मन काम सिराए के बाद आराम करत रहीन। इस दौरान हुरहा ए हाथी मजूर मन ऊपर हमला कर दिन। हमला में 1 जिन मनखे के मौकच में मौत हो गए तो उन्हें 1 जिन आने मनखे के मौत अस्पताल ले जात खानी हो गए। वन विभाग मामला की जांच करत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली रायपुर में 36वां राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर काया किंग केनोइंग प्रतियोगिता के मस्कट पहाड़ी मैना के भी मोचन करीन। ये प्रतियोगिता 12 ले 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में होही। मुख्यमंत्री विश्वास जतैन कि ऐसा आयोजन ले खिलाड़ी मन ला नवा प्रेरणा दीही और प्रदेश के खेल पहचान ला और मजबूती मिली। हाथी मन के मौत के कारण के वैज्ञानिक जांच, वन्यजीव अपराध के पहचान और संरक्षण जैसन प्रयास ऊपर रायगढ़ में 2 दिन के विशेष प्रशिक्षण रखेगी, जिसमें प्रदेश के 78 वन अधिकारी और पशु चिकित्सा विशेषज्ञ मन भाग लिन। शिविर में विशेषज्ञ मन बताइन कि छत्तीसगढ़ में ए बेरा करीबन 450 हाथी घूमत हवे। रायगढ़, जसपुर, कोरबा और सूरजपुर जैसन जिला में हाथी मन के बाढ़त गतिविधि ल देखत ए प्रशिक्षण रखेगी। विशेषज्ञ मन बताइन कि हाथी मन के मौत के सही जानकारी मिले ले अवैया बेरा में ऐसा घटना मन ला रोके और वन्य जीव संरक्षण के प्रयास मल्ला और ज्यादा प्रभावी बनाए जा सकी। ए मौका में वन मंत्री केदार कश्यप कहिन कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम ले हाथी के संगे संग जम्मो वन्य जीव मन के सुरक्षा ला बने ढंग के राखे के प्रयास सरकार करत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कोती ले काम करत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर शोध पीठ के स्थापना के प्रस्ताव ला मंजूरी दे दी है। डॉक्टर अंबेडकर चेयर के स्थापना ले विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन, राष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यशाला, जन

0: जागरूकता कार्यक्रम और पीएचडी कार्यक्रम ला नवा दिशा मिली। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदार हवा गरेर के संग वर्षा होए के चेतावनी दे है। इस दौरान करीबन 50 ले 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले तेज हवा चल सकते है। उन्हें कोनो कोनो जगह में गाज गिरे के संभावना बताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अवैया 3 ले 4 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ में पहुंच सकते है, जेकर बाद 12 जून ले प्रदेश में बने ढंग ले वर्षा होए के संभावना है। यही बीच आज राजधानी रायपुर के संगे संग कुछ एक जिला में हुरहा मौसम बदलिस और तेज हवा के संग हल्का वर्षा होइस। अब थोरकुन समाचार सार मा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक काली बिहनिया 11 बजे नवा रायपुर अटल नगर के मंत्रालय में होगी। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपन बस्तर प्रवास के दौरान आज सुकमा में अमृत मिशन ले बनाए जात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कामकाज के निरीक्षण करिन, संगे संग सबरी नदी ऊपर बनत इनटेक वेल के काम लघलो देखिन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री है गरीब मन के हित में सरकार के 12 बछर के विकास यात्रा ला करे है रेखांकित। गरीब कल्याण और वंचित वर्ग मल्ला ए बदलाव के केंद्र बिंदु में राखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मल्ला दिन वीरता पुरस्कार छत्तीसगढ़ के 3 जवान घलो शामिल। और मौसम विभाग है वैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदार हवा गरेर के संग वर्षा होए के देहे चेतावनी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
1: थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में ये था फिल्म सनम का गीत। आवाजें थी कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की, गीत का समीर थे और संगीत आनंद मीरेन का था।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों

0: के जो बड़े नेता हैं जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी। ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी। और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। राम प्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में, तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुने फिल्म इतिहास से। स्वर है अलका याग्निक और कुमार सानू के, गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिलीप सेन समीर सेन का है।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल तो पागल है का गीत। आवाजें थी उदित नारायण और लता मंगेशकर की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत उत्तम सिंह का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: समाप्त होता है आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
6: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
7: रुक जा बुद्धू।
8: What?
7: ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
6: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
9: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
10: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
11: कूल रहो।
12: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
13: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
12: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
13: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
12: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
13: क्यों?
12: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
14: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
15: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
16: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
15: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
16: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
15: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
16: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
14: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
17: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
16: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
17: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
16: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
17: आकाशवाणी से।
14: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
18: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के भोजराम साहू को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। और धमतरी पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रुपए के 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
4: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
18: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इनमें छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोरीठेमा गांव के रहने वाले भोजराम साहू भी शामिल हैं। भोजराम साहू असम राइफल्स में राइफलमैन के पद पर हैं। उन्होंने मणिपुर में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। राष्ट्रपति ने आज उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया।
2: राइफलमैन भोजराम साहू, तीसरी बटालियन आसाम राइफल्स, 15 नवंबर 2024 आप भारत म्यांमार सीमा रेखा के समीप तैनात घुसपैठ विरोधी दस्ते के स्काउट की भूमिका निभा रहे थे। अपनी टुकड़ी को अचानक एक सघन विस्फोट की चपेट में आया देख व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप निडरता से आगे बढ़े तथा सटीक निशाने से 2 विद्रोहियों को घायल कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद आपने एक और विद्रोही को घायल करते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में 3 विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई एवं भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किया गया। अद्भुत वीरता तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन भोजराम साहू।
18: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल 9 जून से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को अभियान के अंतर्गत उपलब्ध निःशुल्क सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून 2016 को इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूची जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हाथियों की मृत्यु के कारणों की वैज्ञानिक जांच, वन्य जीव अपराधों की पहचान तथा संरक्षण संबंधी प्रयासों पर रायगढ़ में 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के 78 वन अधिकारियों और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। शिविर में विशेषज्ञों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 450 हाथी विचरण कर रहे हैं। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम से हाथियों सहित सभी वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। धमतरी पुलिस ने 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 2,45,00,000 रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर बस्तर से रायपुर आ रही एक कार और पिकअप वाहन की जांच की गई। इस दौरान इन वाहनों में भारी मात्रा में बोरियों में ले जाया जा रहा गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी गांजे को रायपुर और उत्तर प्रदेश में खपाने की फिराक में थे। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के अंतर्गत देवसील गांव में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। बीती रात श्रमिक काम खत्म करने के बाद आराम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक हाथी ने श्रमिकों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। वन विभाग मामले की जांच कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के अवसर पर रायपुर में आज से विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की आर्ट गैलरी में इस विशेष प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों के छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आमजन के लिए खुली रहेगी। वहीं 9 जून को अभिलेखों के संरक्षण और उनके महत्व पर विशेष व्याख्यान आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। यह प्रदर्शनी 12 जून तक चलेगी। संस्कृति विभाग द्वारा सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर में आज से आकार 2026 पारंपरिक शिल्प और कला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 14 जून तक चलने वाले इस शिविर में युवाओं को 14 पारंपरिक कला विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोक कलाओं और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। प्रशिक्षण अनुभवी कलाकारों और कला गुरुओं द्वारा प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन ने दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉ. अम्बेडकर चेयर शोधपीठ की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। डॉ. अम्बेडकर चेयर की स्थापना से विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन, राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, जन जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्राधारित अनुसंधान और PhD कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग केनोइंग प्रतियोगिता के मस्कट पहाड़ी मैना का विमोचन किया। यह प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नव रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और प्रदेश की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। और पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी है। इस दौरान करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना है। इसके बाद आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। इस बीच आज राजधानी रायपुर सहित कुछ जिलों में आज दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल 9 जून को सुबह 11 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान आज सुकमा में अमृत मिशन के अंतर्गत बनाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही शबरी नदी पर निर्माणाधीन इनटेक वेल के कार्यों को भी देखा। दुर्ग पुलिस ने जामुल थाना क्षेत्र से एक महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से 10,00,000 रुपए का मादक पदार्थ बरामद किया है। और राजनांदगांव जिले के ईरा गांव में एक नाबालिग बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण में गंभीर लापरवाही बरते जाने के आरोप में राज्य शासन ने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.के. टंडन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के भोजराम साहू को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से राष्ट्रीय समारोह की शुरुआत करेगा। और धमतरी पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रुपए के 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: एफएम बैंड पर मणिका, ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: कुमार की में अभी आप सुन रहे थे तमन्ना फिल्म से ये गीत।
1: आकाशवाणी F90।
2: मेरा नाम पुरुषोत्तम साहू है। सारंगढ़ की ओर से आकाशवाणी रायगढ़ एवं समस्त रेडियो परिवार को हार्दिक बधाई। आज भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक अवसर है। 1936 में आकाशवाणी नाम से जो यात्रा शुरू हुई वह आज 90 वर्षों की स्वर्णिम परंपरा बन चुकी है। यह केवल एक माध्यम नहीं बल्कि जन जन की आवाज, हर सुबह की साथी और शाम की पहचान रही है। सारंगढ़ जैसे अंचल तक सूचना और संस्कृति पहुंचाने में आकाशवाणी ने सराहनीय भूमिका निभाई है। हमें गर्व है कि हम भी इस यात्रा के साक्षी हैं। रेडियो की इस यात्रा के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
7: देश की सुरीली धड़कन
8: विविध भारती,
6: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
7: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
6: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
7: वीर सैनिकों की जय माला
6: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
7: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
9: सखी सहेली,
7: बॉम्बे टॉकीज और
10: सेल्यूलॉइड के सितारे,
7: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
11: मुझे याद सब है जरा जरा,
6: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
7: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
6: मन का सुकून, दिल की आरती,
7: सुरीली संदली।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
7: देश की सुरीली धड़कन
8: विविध भारती,
6: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
7: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
6: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
7: वीर सैनिकों की जय माला
6: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
7: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
9: सखी सहेली,
7: बॉम्बे टॉकीज और
10: सेल्यूलॉइड के सितारे,
7: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
11: मुझे याद सब है जरा जरा,
6: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
7: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
6: मन का सुकून, दिल की आरती,
7: सुरीली संदली।
12: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
12: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
12: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
13: मन
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

और प्यार हो गया। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी उदित नारायण की। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत नुसरत फतेह अली खां का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आगे महीना जून के अब देखी करिया करिया बादर, नांगर बैला राफा कुदारी करव तैयारी झौवा और कांवर, बांधव पार चांदव डिपरा बीजा भोथरा राखो बरोबर, रोग व्याधि ले धुरिया रहे खेती लगाइयो करके बीज उपचार। और आज के चौपाल सुनैया जम्मो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम जय जुहार। हाँ तो चौपाल और चौपाल सुनैया संगवारी हो और किसान दादा हो, नौतपा के ताप मा तप तपा के मई के महीना छिंगल गे। अब वो महीना जाकर बर कहावत हावे कि 2 जून के रोटी, माने जून महीना के आज होगी 8 तारीख। दादा हो, ये जून के 2 जून के रोटी का हवे? ये वही रोटी हवे जून ला बनाए बर किसान अपन के जंगल ला डोली में खपाथे, सबो मौसम के मार ला झेल के सह के सर्दी गर्मी वर्षा अपन जान ले खेल के, खुला आसमान के तले सांप बिछी जहरीला जीव जंतु मन ले बच के, अपन श्रम जल ले सींच के एक ठन नानकन अन्न के दाना ला बढ़ो के पौधा बना के बाली मा परिवर्तित कर देते, खड़े फसल ला काट के लू मीस के छीन पछर के साफ सफाई करके धो धा के सुखा के जाता मा पिसा के फिर तवा मा तप के हमर भूख ला मिटाए बर हमर थारी मा आते। ददहु ये विषम असाध्य कार्य पूर्ण समर्पण भाव ले किसान जब करते तब कहीं जाके हमला 2 जून के रोटी मिले पाते। वैसे 2 जून कोई 2 जून तारीख नहीं हो दादा हो, ये 2 जून वही हवे जो प्रत्येक दिन मनखेला मने अतकी मेहनत करे के बाद जब वो रोटी मिलते, ये मने कठिन परिस्थिति परिश्रम ले प्राप्त किए हुए ये फल समझा। तो ये पुरुषार्थ के तैयारी के फिर ले शुरुआत हो यह हवे खरीफ फसल के रूप में। अब दादा हो कुछ दिन आओ फिर वर्षा के दिन अवैया हवे, ता अभी ले खरीफ फसल के आधारभूत तैयारी करे बर हवे, डोली खेत के तैयारी बीज उर्वरक के प्रबंधन करना हवे, संग में दादा हो खरीफ फसल पर बीजोपचार के महत्व ला समझना है, कीट रोग प्रबंधन ये सब बोला के ऊपर में अब ध्यान देना है, कमर कस के फिर ले घर तैयार हो जाना है। लेकिन अहू बात ले ठन सुरत करना है संगवारी हो, आज हवे 8 जून, आज के दिन माने 8 जून 1936 में आकाशवाणी के स्थापना हो रही, आकाशवाणी रायगढ़ के नहीं माने हमारे देश के आकाशवाणी के हो रही। वैसे तो वर्ष 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण के शुरुआत हो गई रही, फिर ऑल इंडिया रेडियो के नाम ले 8 जून 1936 में शुरू हो रही, फिर वर्ष 1954 में एकर लोकप्रिय नामकरण हुई जोन ला हम शान ले कहथन आकाशवाणी, एकर प्रसारण ले 90 बच्चर हो गए।

0: उपलक्षमी तो आयोजन करें तद दहो सुनत रह जन जन के वाणी आकाशवाणी। अब एक बात दहो देश भर में आकाशवाणी 591 आकाशवाणी केन्द्र ले प्रसारित होते जोन में 23 भाषा और 146 बोली में प्रसारण करते आकाशवाणी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हावे संगवारी हो आप मन भर भी और हम मन भर भी और पूरा देश भर भी। तो अब चलो तो दहो अब आगु की गोट बाट शुरू करी जोन खेती किसानी के डहर में अब हमार चला थावे आज के बाद। तो दादा हो आज के बाद वो बात हर होते जोन समसामयिक परिस्थिति के हिसाब ले आज हमला मैंने सबले पहली में करना है शुरू में। तो शुरू में क्या करबो तो देखा छत पर बागवानी समय की मांग तो किसान दादा हो सबो जाना था आज के समय में ताजा खाना शुद्ध खाना दुभर हो जात हवे सबो जिनिस पर हम आज बाजार ले निर्भर हो गए हवन। कुछ कारणवश एक दो दिन भर बाजार बंद हो जाते तो हाय तो वह मज जाते संग में तेजी ले बढ़त जनसंख्या शहरीकरण के संग कृषि के भूमि के ह्रास और रासायनिक खाद दवाई मन के बढ़त उपयोग ये सबो भोजन ला डोली ले थाली तक हबरे ले कहाँ तक परिवर्तित कर दे हवे। तो किसान तो बुपरा अपन डोली में रासायनिक उर्वरक खाद कर करी के जैसे भीतर के अनाज ले उपजाते लेकिन हमार थाली तक पहुँचत ले में कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते। ऐसने स्थिति में ददहो आज तो हर के छत हवे पक्का छत हवे खदर खपरेला वाला छत तो अब देखे पर नहीं मिले। ऐसने में छत में बागवानी जोन ला हम रूफ टॉप गार्डनिंग कह जाते आज के समय में महत्वपूर्ण मांग बन गए हवे। घर के खाली छत के उपयोग करके फल सब्जी मसाला और फूल उगा के न केवल परिवार ला हम ताजा और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा सकत हन संग में पर्यावरण के संरक्षण तापमान नियंत्रण में घलो योगदान देथन। तद दहो छत में बागवानी करे बर गमला या ग्रो बैग या ट्रे या कोई दूसर उपयोग करे लायक पात्र जैसे बहुत बार कहते थन कि तेल के टीपा मन डब्बा मन टूट फाट जाते हैं अहू में लगो ले अमन अपन हिसाब ले अपन दिमाग तरीका तकनीक लगा के फोड़ फाड़ के अहू में माटी खातू भर के उपयोग करथन और इमा का लगा जे किए जा सकत हवे। एक में देखा टमाटर है मिर्चा है भाटा है रमकलिया है धनिया है पालक है मेथी है लौकी है करेला है जिसने कतका सब्जी हवे आसानी ले उगाए जा सकत हवे। एकर बार घर में ही जैविक खाद तो कहाँ मिली घर के जोन हमारे वर्मी कंपोस्ट बना सकन तीर तिखार के पान पताई कचरा कूटा या रसोई घर ले निकले जोन भी जैविक कचरा है ये मला सड़ा गला के बढ़िया खातू बना सकत हन। ये मल पौधा मल अच्छा पोषक तत्व तो उपलब्ध कराते हैं जाकर ले रसायन मुक्त उत्पादन प्राप्त होते और देख रेख बढ़िया होइस पानी के सिंचाई बढ़िया होइस तो आसानी ले हो जाते। लोग लेकर कोनो भी शौक ले में पानी डाल देते और बंद कचरा होत रहते तो नींद उखाड़ देते और टूटत गिरत रहते तो मल बढ़िया सुधार देते। तो ददहो छत में बागवानी करे में और कतका लाभ हवे यह घर के तापमान ले नियंत्रित करके रखते वायु प्रदूषण ला कम करते वर्षा जल के संरक्षण ला बढ़ावा देते परिवार के सदस्य मन ला प्रकृति ले जुड़े के मौका देते लइका मन ला बाढ़त फसल ला देखते तो ओमन ला नवा सीख और आनंद के प्राप्ति होते मानसिक तनाव कम होते। बाढ़त महंगाई के समय घर में ही ताज़ा भोजन ताज़ा साग सब्जी मिल जाते परिवार के आर्थिक बोझ घोले कम होते। दादा हो आज के समय में जब हरियाली क्षेत्र कम हो जात हवे हर मनखे ला अपन छत ला हरियाली ले सजाना चाहिए सजाए के प्रयास करना चाहिए। छत में बागवानी न केवल स्वस्थ जीवन शैली कोती ले जाते बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता कति घलो मनखे ला प्रेरित करते। तो एकर बर कहे जा सकत हवे कि छत में बागवानी वास्तव में समय के मांग हवे। तो ये तो एक ठन विषय हुई दादा हो विषय के ऊपर में गंभीरता ले सोचा और चिट्ठी पत्री के दिन हवे आज सोमवार तो शामिल करबो तो मैं एकर चिट्ठी पत्री ले थोड़े चेताएं कि अवैया चिट्ठी पत्री में विषय कैसे लागी साओ यार कैसे मने प्रेरणादायक रहीस का रहीस एकर विषय में जरूर लिखिया। तो गोट बाट ला एक विराम दी एक ठन संदेश सुनी और फिर तहाले को अगवाबो आज के मौसम फिर ओकर बाद भेंट करबो आज के किसान।
1: बदलो बदलो आदत बदलो
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: हाँ ये हो गया दादा संदेश, संदेश अपन के संदेश देखे चल पर रही। अब दादाओ देखो गोट बाट के दूसरा क्रम हमारे निकल के आते हैं आज के मौसम। दादाओ जून के महीना आ गए, भुइया नवतपा के ताप ले तप तपा के पके हवे, वर्षा के आय के पहले अभी गर्मी चरम में रही। जैसे कि मौसम समाचार में बतात रही बहुत से ठौर में अभी गरेर गर्रा धोखा मने चलही, हल्का बूंदाबांदी घोले हो सकत है, तो जेठ घलो बाढ़े हवे। ऐसने में मौसम विभाग जो है कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि महाविद्यालय रायगढ़ के में हवे, वहाँ के यंत्र मन ले मिले आंकड़ा के हिसाब ले आज के अधिकतम तापमान रही 39 अंश सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रही 27 अंश सेंटीग्रेड। आर्द्रता माते माने नमी बेहनिया 7 बजे का 78% रही, जो न बेर चगत की बेर में झुरा झुरी के मंझनिया 2 बजे का 45% हो गए रही। हवा की गति सामान्य 1.7 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो न दक्षिण ले पूर्व दिशा की यात्रा में रही। ये पूर्व प्रति चला था दादा वही वाले फिर ही तहाँ ले हमार बका हुई वही है वही पूर्वैया, जो न हमारे देश में आवे पूर्वा सुहानी आई रे ऋतुओं की रानी आई रे। तो ये हो गया आज के मौसम। और आज के किसान करा भेंट करबो दादा हो तो मैं ये कहता हूँ देखा तो किसान मन की खोज खबर मैराथन को आज नवा नवा तकनीकी आ गए, नवा नवा यंत्र आ गए, कई प्रकार के कृषि यंत्र मन हमें लगाए बुने धल रखे धरे के तरीका बदल गया हवे। तो ऐसने स्थिति में अब भुइयाँ कृषि योग्य भुइयाँ को ले कम बचे थे तो हम का खेती और कैसे कर सकत हन और कैसे लाभ ले सकत हन, तो ये खोज में हम आकाशवाणी हमार किसानवाणी या चौपाल प्रभाग रथे तो वही खोज में मैं हबरे रहे दादा हो विकास खंड पुसौर के कोरा में बसे गांव गोहड़ीपा के कोड़ातरई में भाटाबारी में किसान दादा रहोया हमें जिला शक्ति के माल खरौदा के किसान के नाम पर थे रामलाल चंद्रा। भेंट पलगी के बाद बात में बात बढ़ी तो किसान दादा बताइन कि भाटा के त कैसे लगाए के पहले कैसे तैयारी करने से पड़ते मशीन मन के काका उपयोग होते त चलाओ सुना जाए किसान के श्रम गाथा के कहानी किसान के जुबानी आज के किसान। आकाशवाणी रायगढ़ सुनैया जम्मू संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। संगवारी हो विकसित खेती असुरक्षित पर्यावरण ये क्रम में आकाशवाणी रायगढ़ सदा प्रयासरत रहते अपन के आसपास के किसान जो खेती किसानी के डहर में पर्यावरण के डहर में औ दूसरे व्यवसाय में अपन उन्नति करत हैं तरक्की करत हैं इमन के अनुभव ला ज्ञान ला आप मन तक पहुँचाए के हमारे प्रयास रहते। इस क्रम में आज पहुँचे हूँ मैं एक ठो गाँव और किसान ले सीधा बात हुई तो चलो उस किसान के बातचीत सुनी तो ये सुनो किसान के श्रम गाथा के कहानी किसान के जुबानी आज के किसान। तो किसान दादा हमारे तो पहले आप मतलब राम राम।
1: राम राम जी
0: आप मन के नाम बताइए संगवारी।
1: रामलाल चंद्रा है हमन के नाम।
0: रामलाल चंद्रा आप मन कहाँ के रहोया।
1: हमन रहोया माल खुर्दा के।
0: अच्छा
1: शक्ति जिला माल खुर्दा।
0: अच्छा आप मन के जो ये क्षेत्र है वो खेती किसानी का जहाँ करता आप मन। हाँ। ये कहाँ होते।
1: ये हमन के 3 जगह है, एक तो अपन माल खुर्दा में है।
0: अच्छा
1: और एक ठो अभी रायगढ़ जिला कोणतराई में है।
0: अच्छा
1: और एक ठो अभी नया प्लाट अभी हम चालू करे हैं लारा में।
0: अच्छा नाव विकसित कर। तो संगवारी एमे तो खैर आप मन 3 जगह में बता तो हमन जिन जगह में अभी हम कोणतराई माने गोहड़ीपा में आप मन जो अपन के परिक्षेत्र लगाया एक चर्चा करबो ये कतका रकबा में हुई आप मन के खेती।
1: ये घर हमन के 20 एकड़ में है।
0: 20 एकड़ में।
1: हाँ
0: तो इमे का लगते अभी तक का लगाता
1: आप मन। लौकी लगे है बैगन लगे है कलेरा लगे है।
0: अच्छा।
1: खीरा लगे है ऐसे टाइप के
0: बड़े लगा था।
1: हाँ।
0: तो ये फसल आप मन एक ही प्रकार के लगा था ये जैसे बता था मतलब बदल बदल
1: नहीं फसल चक्र करना पड़ते
0: करना पड़ते
1: इमें कई प्रकार के फंगस रहित बीमारी जो लगते
0: हाँ।
1: वजह से फसल चक्र करना पड़ते।
0: अच्छा तो भुइया को ले मनुष्य एक प्रकार के पोषक तत्व तो पौधा ले लेते।
1: हाँ।
0: तो फसल चक्र करे ले पोषक तत्व तो पूरा उपयोग इस्तेमाल हो जाते और संग संग जो भी माने कीड़ा मकोड़ा रोग व्याधि रहते वो सब मन के खत्म हो जाते।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो अभी गर्मी के समय में आप मन तो पूरा आप मन के बेड पूरा खाली लगा थे।
1: हाँ।
0: तो का लगाए के सोचे है में?
1: अभी बैगन लगाबो।
0: बैगन लगा तो एक तैयारी मैंने चला थे तो ये तो कब ले तैयारी शुरू कर देता आप मन।
1: ये मार्च चले हम तैयारी चालू कर दे।
0: तो कैसे कैसे तैयारी करता।
1: पहले जो भी फसल लगे रहते वो उखाड़ थन।
0: अच्छा
1: ओकर बाद फिर मल्चिंग ले निकाल के
0: जोताई कर आप मन के पूरा खेती आधुनिक माने पद्धति ले नवीनतम तकनीक जो है तेमे माने करता
1: हाँ, हाँ,
0: तो एमे मल्चिंग है ड्रेन ड्रेसिंग जैसे आप मन ड्रिप लगाए है
1: ड्रिप लगाए है
0: कूटी ऊंटी गाड़ी रहता वो सब लोग उखाड़ के माने जोताई करे में कैसे करता
1: जोताई करे में रिवर्सल प्लाउ के उपयोग करथन
0: अच्छा
1: रोटेटर के उपयोग करथन और बाद फिर बेड बनाए बा रेजर है हमन हाँ
0: अच्छा तो बेड अपन बनाए है अभी ये बेड बना के लिए छोड़ दिया थोड़े दिन तक मैंने कहा धूप में पके बा
1: हाँ
0: तो कब लगाना है मैं फसल फिर आप
1: अभी हमन के फसल लगी 25 जून के अच्छा, पौधा लगना
0: जून में लगी
1: हाँ
0: तो अभी तो बेड रोड बना रहे
1: हैं हाँ।
0: तो एक बेड ले दूसरे बेड की दूरी कतका रखे है अपन
1: एक बेड से दूसरे बेड की दूरी है अमन के 8 फीट की
0: तो अति ज्यादा गैप रखे है बीच में अब एक लाइन आ जाती तो हमें ज्यादा अपन की उत्पादन मिलती
1: नहीं उत्पादन दूरी मेंटेन करे में ज्यादा अच्छा है
0: अच्छा
1: है ना बीमारी के भी थोड़ा से राहत मिलते और स्प्रे के लिए हमन अभी ट्रैक्टर मिनी ट्रैक्टर जो आते 25 HP 35 HP
0: अच्छा
1: हाँ
0: वो ले बीच में 8 फीट की जगह छोड़े है वो में ट्रैक्टर आप मन के पूरा घुस जाए
1: हाँ, मिनी ट्रैक्टर है
0: हाँ।
1: वहाँ ब्लोअर के साथ स्प्रे करथन तो हमें स्प्रे के लिए जो लेबर की लागत है वो भी कम हो जाते
0: अच्छा अच्छा
1: और प्रोडक्शन भी अच्छा था
0: अच्छा थे।
1: हाँ।
0: तो ये में आप मन तो बेड बना दे रहे अभी में आप मन ड्रेसिंग ड्रिप माने लगा पाइप लगा है
1: हाँ।
0: पाइप लगाए तो मल्चिंग कर
1: हाँ।
0: तो मल्चिंग करने के बाद आप मन के पन्नी में पहले ले मैंने छेदा है ले पहले करवाया
1: हाँ, हाँ, कंपनी से ही छेदा हो गया थे
0: अच्छा
1: होल
0: तो ये समान दूरी में मैंने रहते
1: हाँ।
0: ये में आप मतलब फिर अच्छा वो माटी में कुछ आप मन मिला था पहले की मैंने सीधा ड्रिप के माध्यम ले ही चला था
1: नहीं डीएपी पोटास और सुपर फास और जो गोबर खाद होते
0: अच्छा अच्छा
1: वाला बेसल के रूप में दिए जाते
0: बेसल डोज हाँ। जो शुरुआती दौर में मैंने दिए जाते थे
1: हाँ।
0: और बाद मल्चिंग ले ढक दिए जाते
1: बिल्कुल
0: तो फिर 15 जून तक मैंने अच्छा इसमें क्या वैरायटी के लगा के सोचे हैं आप मन
1: ये के 212 आते
0: अच्छा
1: है ना ग्राफ्टेड वाला पौधा ऑर्डर करे हैं वो वाला लगाना है
0: तो ये तो आप मन आउ लगा चुके है कैसे रहते है आप मन के कैसे अनुभव है ये हमारी तरह के माटी में मैंने कैसे उत्पादन है
1: हाँ बहुत अच्छा उत्पादन है एक अच्छा। के मौसम और टेम्परेचर
0: जलवायु हाँ। हाँ। तो ये एक वजह से उत्पादन हो जाते
1: हाँ।
0: बीच में रोग व्याधि तो मैंने लगत रहते एक देख रेख निगरानी रहते आप मन निगरानी पर छोड़े तो जो भी दवाई माटी बाद में लगते थे मतलब ड्रिप के माध्यम से ही मैंने चलते और आधुनिक तकनीक के जब पालन कर रहा था तो ये सब तो स्प्रे स्प्रे ड्रिंक सब लगे पानी उनी पर्याप्त मैंने हो जाते आप
1: हाँ, हाँ, पानी पर्याप्त
0: तो पानी डायरेक्ट आप मन ट्यूबवेल ले चला था कि कोई टंकी की
1: नहीं टंकी बनाया टंकी के माध्यम से ही चलते प्रेशर प्रॉपर रूप से मेंटेन होते
0: हाँ नहीं एक में मैं जानना चाह रहे किसान अक्सर मैंने ऐसे जब आधुनिक तकनीक ले करते तो डायरेक्ट ट्यूबवेल ले पानी नहीं चला
1: हाँ, हाँ।
0: मैंने कोई टंकी में तो कोई किसान कहते पानी मटमैला रहते मोटा रहते तो बैठ जाते और बाद स्प्रे में का छोटे छोटे मैंने छेदा रहते ड्रिप में तो मैं फंसे उसे नहीं एक लेवल में एक समान प्रेशर में पानी माने जाते ये सब चीज देखते हुए मैंने हमन टांकी लिए मैंने प्रयोग करते मैंने कहा अच्छा उत्पादन हो जाते यहाँ तो फिर उत्पादन आप मन कहाँ पहुंचा था कहाँ भेजता मार्केट कहाँ है कर
1: ये हर फसल के अलग अलग मार्केट है जैसे अगर बैगन अभी हमन लगा था तो बैगन अभी हमन के वेस्ट बंगाल माल उठा थे
0: अच्छा
1: और उड़ीसा माल उठा थे ये फिर इधर रांची ये सब उठा थे माल बोकारो वगैरह
0: अच्छा अपन यहाँ लोकल मंडी जैसे पटेल वाली है वहाँ
1: नहीं यहाँ लोकल मार्केट नहीं दे
0: अच्छा
1: यहाँ तो, रेट नहीं मिले
0: रेट नहीं मिले तो बाहर ले मैंने संपर्क करते और आजकल तो मोबाइल इंटरनेट के जमाना है कहाँ का मार्केट है कहाँ कतका भाव मिला थे कैसे सब मन हो जाते
1: हाँ जहाँ रेट अच्छा लगी वहाँ फिर बात करके सौदा करके फिर दे देते हैं
0: तो अभी हालांकि अभी लगाए नहीं है आप मन बैगन लेकिन हमन मन चर्चा ये करा था उत्पादन होगी ना और जैसे ट्रांसपोर्टिंग रहते तो ट्रांसपोर्टिंग में जैसे लंबा समय लंबा दूरी तय करे बर रहते मतलब तो कैसे आप मन मने पहुंचा था वहां तक
1: नहीं वहां से गाड़ी आते पार्टी से गाड़ी आते
0: अच्छा
1: वो फिर उठा के ले जाते 8 घंटा 12 घंटा के सफर रहते
0: और इमे ग्रेडिंग करना भी मने आवश्यक मने रहते बैगरों में जैसे छोटे बड़े सब ले इकट्ठा भर के तो मने नहीं
1: हाँ,
0: देते
1: हाँ,
0: तो
1: हाँ, ग्रेडिंग करना
0: ग्रेडिंग करना पड़ते तो इकले का फायदा होते ग्रेडिंग करे में बचे खुचे रहते ते मले कैसे करता
1: ग्रेडिंग करे से बाहर के मार्केट में अच्छा रेट मिलते
0: अच्छा
1: और जो हल्का माल है ओला फिर गौशाला या फिर एक ना लोकल मंडी में दे अच्छा, दो नंबर माल करके
0: यहाँ भी मने ये हो जाते
1: हाँ।
0: तो अभी तक के आप मन के अनुभव मने का बताते ये व्यवसाय बढ़िया है और किसान मन प्रेरित होना चाहिए ऐसे मने करना चाहिए
1: हाँ हाँ ये बिल्कुल किसान मन करना चाहिए ड्रिप पद्धति जो है
0: हाँ आधुनिक पद्धति
1: हाँ, हाँ ये बहुत अच्छा है
0: हाँ।
1: बढ़िया से प्रॉपर रूप से उत्पादन लिए जा सकते फसल के मेंटेन किया जा सकत है, बीमारी तो, रोग वगैरह सब ला अच्छा
0: अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ। तो आधुनिक कृषि में आपन कतका कैसे अनुभव करता कि मैंने ये तकनीक के या मशीन मन के कतका उपयोग है?
1: मशीन के धीरे धीरे पहले तो नहीं रही से, लेकिन अभी अब, हाँ, पहले नहीं रही से, अभी धीरे धीरे लेबर के थोड़ा सा शॉर्टेज के
0: चाहे जोताई ले लेके और जैसे आप मैंने दवाई छींचे बर कहा था मैंने और ग्रेडिंग करे बर भी मैंने कहा था दवाई छींचे बर या जो जो भी ड्रेसिंग वेसिंग मैंने चला था तो ये सब पर मैंने मशीन की आवश्यकता मैंने पड़ा थे। तो चलो बहुत बढ़िया, आप मन की खेती बहुत बढ़िया हो, अभी तो तैयारी चला थे तो तैयारी हो जाएगी, फसल लगे रही उस समय में फिर आप मन ले चर्चा हुई, आप मन के अनुभव फिर साझा करबो। तो आज बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे तिले राम राम
1: राम राम।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हाँ, ये संदेश के पहले सुना था आज के किसान दादा बहुत बढ़िया बताइन दादा हो, ऐसा करके हम भी किसानी के बूता ला लाभप्रद बना सकत हन। दादा हो, ये तो खेती किसानी के हुई, लेकिन खेती किसानी के संग संग हम पशुपालन भी खेती किसानी के एक ठो महत्वपूर्ण अंग हवे। अच्छा, एक पहले प्रश्न ये पूछ लेता हूँ दादा हो, सर पशु मन के संतुलित आहार में का तत्व पाए जाते? प्रश्न हवे, पशु मन के संतुलित आहार में का तत्व पाए जाते? तो लिख के भेजिए ईमेल के माध्यम ले, पत्र के माध्यम ले, चिट्ठी में आप मन के शामिल करबो। अब आज के नसीहत जो कहते कि दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार प्रबंधन, तो किसान दादा हो, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन कृषि कार्य के एक महत्वपूर्ण अंग हवे। कृषि और पशुपालन एक दूसर के पूरक हवे, एक के उत्पाद दूसर बर उपयोगी होते। दूध उत्पादन बढ़ाए और पशु मन ला स्वस्थ रखे बर संग में पशुपालन ला लाभकारी बनाए बर संतुलित आहार के महत्वपूर्ण योगदान होते। दुधारू पशु मन ला ओमन के आयु के हिसाब ले, वजन के हिसाब ले, दूध उत्पादन के क्षमता और गर्भावस्था की स्थिति के अनुसार संतुलित आहार दिए जाना चाहिए। दादा हो, संतुलित आहार वो आहार होते जोन में पशु मन के आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होते। दुधारू पशु मन के आहार में हरा चारा, सूखा चारा और दाना के मिश्रण उचित संतुलन होना चाहिए। इमा आप देखा, हरा चारा जैसे कि बरसीम, ज्वार, मक्का, नेपियर घास, ये मन ले पशु मन ला विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते। सूखा चारा जैसे कि भूसा, सूखा घास, पैराकुटी, ये मन पाचन क्रिया ले बेहतर बनाते हैं। एकर संग संग दूध उत्पादन के अनुसार संतुलित मात्रा में दाना खरी मिश्रण देना आवश्यक होते। प्रोटीन के प्राप्ति पर सामान्यतः यह पशु जतकी दूध पशु देत हवे ओकर आधा दाना होना चाहिए। अब 5 किलो दूध बर 2.5 किलो दाना और शरीर के आवश्यकता पर अतिरिक्त 1 किलो दाना देना चाहिए। दादा हो, एकर अतिरिक्त पशु मन ला प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और ताज़ा पानी उपलब्ध कराना चाहिए। एक ठन दुधारू गाय या भैंस ला प्रतिदिन 50 से 80 लीटर पानी की आवश्यकता होते। तो किसान दादा हो, आहार में खनिज मिश्रण के संग संग साधारण नमक भी नियमित रूप से देना चाहिए। यह पशु मन में प्रजनन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और दूध उत्पादन में वृद्धि करते। गाभिन पशु मन ला प्रसव के लगभग 2 महीना पहले अतिरिक्त पौष्टिक आहार देना चाहिए। कैल्शियम के सिरप देना चाहिए और जन पशु मतलब पीला मतलब जन्म के तुरंत बाद जो बच्चा है वो लखीस कोलेस्ट्रम पिलाना जरूरी होते। यह उमन मन नान नान पीला मन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते। दादा, संतुलित आहार प्रबंधन अपना के हम पशुपालन लाभकारी बना के दूध उत्पादन में वृद्धि करके पशु के स्वास्थ्य ला भी सुधार सकत हन। एकर प्रत्येक पशुपालक मल्ला ध्यान दे के पशु मल्ला संतुलित आहार देना आवश्यक हो जाते। तो संगवारी हो, एकर संग मने आज के दिन के बखत बतर आगे हवे। आज हवे सोमवार और सोमवार के दिन चिट्ठी मिलिस होते और चिट्ठी मिलिस के टाइम टेबल तो फिक्स है दादा हो, ओकर बस 7:45 और 7:45 हो गए। तो मैं श्रोता संगवारी मन के जोन मन के भाव है, विचार है, जोन ला शब्द के माध्यम ले सुघर सुघर गुरतुर गुरतुर चाशनी में बोर बोर के शब्द मला पिरो पिरो के लिखे हमें, तो ये ला मैं प्रस्तुत करत हूँ। भाव शब्द मने शब्द श्रोता संगवारी मन के हावे और आवाज़ मोर हावे और भाव सुने के आप मन मने अनुभव करी है कि कतका मया ले और कतका ध्यान ले कार्यक्रम ला सुनते और ई मन के प्रयास, ई मन के मेहनत हावे कि आज हम देश में

आकाशवाणी के 90 बच्छर होए के उत्सव मनात हवन। तो ये चिट्ठी शामिल करा था संगवारी हो सबले पहली एकरेच मने 21 मई के एकरेच विषय में हवे। तो आप सबो झनला राम राम जय जोहार। दिनांक 2 जून कार्यक्रम हेलो संगीत संचालन महोदया सुमित्रा पटेल जी। दिनांक 3 जून कार्यक्रम लोकरंजनी ईमेल और पत्रों पर प्रस्तुति महोदया रजनी पटेल जी की। और दिनांक 4 जून कार्यक्रम हेलो संगवारी फोन इन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी गीतों का महोदय संचालन स्वतंत्र महंत जी के। और दिनांक 4 जून कार्यक्रम माटी के गीत ईमेल व पत्रों पर प्रस्तुति महोदया गोमती साव जी के। तो दादा हो ये जो अभी आप मतलब जो संगवारी मन मैंने कही हेलो संगी है, ईमेल और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम है, हेलो संगवारी है, माटी के गीत हवे, इमन संगवारी हो हमार कार्यक्रम मन के जान है। कबर इमन हमार जोन भाखा है छत्तीसगढ़ी और इकर जोन संगीत है जोन हम माटी ले जुड़े हवे, जोन हमार घर के परवा टाटी फैरका कोला बाग डोली टिकरा बकरी नार तुमा सबो ले माने जुड़े हवे। यह ऐसे लागते कि हमार अंतस में समाय हवे। तो ये मन के प्रस्तुति हवे। और आप मला जानकारी हुई कि हम आकाशवाणी रायगढ़ ले या कोई भी आकाशवाणी ले छत्तीसगढ़ी फिल्मी गीत मन के प्रसारण नहीं करन। हमन लोकगीत माने जोन मन हमार धरोहर हैं ये मन के हम प्रसारण करथन। तो यही संगवारी आगे लिखत हैं। दिनांक 5 जून कार्यक्रम हमार लोकगीत फरमाइशी कार्यक्रम महोदय जी रामविलास पटेल जी संचालन में थे। ये सबो कार्यक्रम पर आप सबो झनला बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अब 31 मई के वाकथन माने जोन हमन आकाशवाणी रायगढ़ में मैराथन दौड़ के मैंने आयोजन कर रहे नौकर मोर आप सबो झनले मुलाकात हुई मोला बहुत अच्छा लगी सर जी धन्यवाद। तो सही में आप संगवारी मन के चिट्ठी आते चिट्ठी ला हम शामिल करथन आप मन जैसे लिखे रहथन। तो आप मन के लेखनी के आधार में आप मन के एक ठन फोटो बनते हमार दिमाग में। हम सोचथन कि हमार मितान हमार संगवारी मने ऐसने दिखत हुई उनकर विचार भाव और जब ऐसने है था। और आप मन सोचत हुई है कि हम एक ले बोला थन तो कौन जानी कौन का उम्र के हावे कौन कैसे हावे कौन ला आप मन दीदी कहता कौन ला भाटो कहता कौन ला संगवारी कहता कौन ला जहुरिया कहता कौन ला मितान कहता कौन ला महोदय कहता कौन ला सर कहता। ये आप मन के मने हमार आवाज़ ला सुन के आप मन अपन के मस्तिष्क में पिक्चर बनाए हुई है चित्र बनाए हुई है। लेकिन प्रगट मुलाकात वही दिन हुई 31 मई के। बहुत से हमर मायारु श्रोता मन आए रहीन और वो जमाना के श्रोता मन रहीन जब आकाशवाणी शुरू हुई हमार आकाशवाणी रायगढ़ जब शुरू हुई वो खानी ले वो मन सुनत आते हैं नियमित श्रोताएँ और चिट्ठी भी लिखत रहीन। आज तो ईमेल के जमाना आ गए तो ईमेल ही मैंने उन्होंने लिखत हैं। तो ऐसने श्रोता मन हावे औ मल्ले मुलाकात करे बर मिलिस हमन तो न तो ओला हम आगू में आइन तो हम ओला जानत नहीं रहीन वो हमला जानत नहीं रहीन। लेकिन जब मुँह ले बोली निकलिस तो वो बोली ला सुनते कि समझ गिन कि आप फलाना आप दिलीप हो कि आप सुमित्रा हो कि आप राम विलास हो कि आप स्वतंत्र महंत हो कि आप मने सोना भैया हो सबो संगवारी मला ये मया है ये आप मन के प्यार है आप मन के दुआर है और एक रे हमन भूखा रथन। तो संगवारी हो जरूर आप मन के ये आशीर्वाद ले प्रसाद ले जरूर परोसी है। और संग में कहते हैं आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होए पर आकाशवाणी रायगढ़ के सबो कर्मचारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर जी। आज 8 जून है जैसे कि मैं कह रहे संगवारी 90 वर्ष पूरा हो गए। तो आपो सबो श्रोता संगवारी माला होले बहुत बहुत बधाई और अतकी बढ़िया भाव अभिव्यक्ति व्यक्त करत रहीन। राम भाटा संजय मैदान वार्ड नंबर 3 रायगढ़ ले रोहित जयलक्ष्मी ऋषभ अंश लक्ष्मी और लक्ष्मी जयलक्ष्मी ये सबो संगवारी मन मन के रही चिट्ठी। और दूसर चिट्ठी है आकाशवाणी रायगढ़ के सबो संगवारी मला राम राम जय जोहर इला कहत हावे मिठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ कोती के गेंदलाल श्रीवास जी। और ये मन लिखत है कि दिनांक 3 जून के लोकरंजनी माँ झमाझम पुराना छत्तीसगढ़ी गीत सुने जेहर विकट आनंद आई। तो यशने एकठे हम छत्तीसगढ़ी में शब्द है तो दहो अंग्रेजी में खोजिया हिंदी में खोजिया तो नहीं मिले तो विकट बोले मिल जात हो ही लेकिन चोचो बोरो अब खोजा दूसर भाषा में का होते एक मतलब चोचो बोरो ये हमार छत्तीसगढ़ी के शब्द है। तो विकट मैंने बहुत मजा आई कहते हैं और गाढ़ा गाढ़ा चिट्ठी शामिल घलो करीन ऐसने चिट्ठी शामिल होते तो हमार खुशी और दुगुना हो जाते कार्यक्रम ले सुने ले विकट आनंद भी आते। प्रभारी महोदय माननीय रवि आनंद सर जी ला ऐसने कार्यक्रम खातिर बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसने सुघर सुघर आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ चलही और हम सबो झीन सुनबो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दादा हो आप इस मन के खान में हरा हवे आप मन जितने दिन तक मैंने

रहिया, आप मन ऐसे चिट्ठी मया दुलार प्यार सम्मान के देत रही तो जरूर कार्यक्रम आगे बढ़त रही। और अगला चिट्ठी शामिल होते तीसरा नंबर के संगवारी लिखत है तारीख हिसाब ले 2 जून जाकर वो मैं कह रहे हैं कि 2 जून के रोटी दिन मंगलवार। हेलो संगी लेके आए रहीन लोकप्रिय सुमधुर आवाज के धनी कोयली कस बोली फोन के माध्यम ले अपन बात साझा करीन सुमित्रा देवी पटेल श्रोताओं भाइयों से बड़ सुघर गोट बात करीन आनंद आगे और गीत संगीत सुने मिलीस एकर बर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चला सुमित्रा बहनी तक आप मन के शुभकामनाएं पहुँच गई सोही और अंतसले आप मन बर बढ़िया सुघर सुघर दुआ प्रशंसा तारीफ मने निकलत होई। और संगवारी मन आगे लिखत हैं 3 जून दिन बुधवार सुबह लोक रंजनी कार्यक्रम परसोइया रहीन दीदी रजनी पटेल बड़ आनंदमयी प्रस्तुति बर हृदय ले झोला झोला बधाई। तो 4 जून दिन गुरुवार हेलो संगवारी सुघर प्रस्तुति करीन भैया हमर जाने माने श्री स्वतंत्र महन जी बहुत अच्छा लागी प्रस्तुति खातिर बधाई एवं धन्यवाद संगे संग आप मला बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप मला भी बहुत बहुत शुभकामना संगवारी हो और आप मन के पत्र के माध्यम ले रेडियो के माध्यम ले स्वतंत्र महन तक आप मन के शुभकामना संदेश पहुँचा तो ही और आगे बढ़बो चिट्ठी में। इहे दिन के कार्यक्रम माटी के गीत लेके आए रहीन दीदी गोमती साहु जी लाजवाब प्रस्तुति पर हृदय ले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं धन्यवाद। और ये और लिखते हैं स्मृति दुबे जी ने कविता पाठ कर सुंदर मन भावन लगीस हमर कोतिले गाढ़ा गाढ़ा शुभकामनाएं बधाई। और 5 जून के दिन शुक्रवार हमर लोकगीत लेके आए रहीन आकाशवाणी रायगढ़ के आन बान शान उद्घोषक कंप्यूटर संचालक कार्यकर्ता कंप्यूटर कस टाइपिंग बोली हावे भैंसा गाड़ी कस वजन लेके चलोया श्रीमान राम विलास पटेल जी। हा हा हा श्री जी 2020 पर्यावरण दिवस के चुनिंदा गीत सुनाइन प्रस्तुत खातिर कोरी कोरी बधाई और शुभकामनाएं। तो आप रामविलास दादा हबर की सोही आप मन के बधाई शुभकामना और आप मला बधाई। और 6 जून दिन शनिवार चौपाल में आए श्री अजय श्रीवास जेला कही थे छोटे लाल जी किसान श्री रूप नारायण यादव जी से अपने खेती किसानी के बारे में जानकारी हमला दीन अति उत्तम लागिस एकर बार छोटे लाल और चौपाल प्रभाग साथ साथ आकाशवाणी रायगढ़ के मुखिया श्री रवि आनंद जी श्री दिलीप चौधरी जिला हमर कोतिले के अंतस ले बधाई धन्यवाद शुभकामनाएं। तो मोरो नाम धरे संगवारी हो हमर मुखिया साहब के तो हमर धुरी हावे हमर मुखिया हावे तो चलो सबो कति के शुभकामना आप मन के स्वीकार हावे और आप मला भी बहुत बहुत बधाई ऐसने चिट्ठी के माध्यम ले दया मया प्यार दुलार सम्मान ला बनाए रही दादा हो और अतकी बढ़िया चिट्ठी लिखोया रहीन माँ महामाया चौक मेघा पारा ले रामकुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल दीपांजलि पटेल दीपक पटेल और टेकलाल पटेल सबो संगवारी मला बहुत बहुत धन्यवाद और अगोरत्री है दादा हो आप सबो मन पर बढ़िया सुग्घर अकन के गीत के परसोना दी हो आप मला में। तो सब प्रेम सहायक बंदगी अगला चिट्ठी आवे 2 जून 2026 को हेलो संगवारी सुनाया कोयल बोली सुमित्रा पटेल दीदी बड़ निक लागिस। 3 जून को लोकप्रिय लोकरंजनी सुनाया रजनी पटेल दीदी बहुत सुंदर पेश किया और बेहतरीन गीत सुनाया। 4 जून को माटी के गीत सुनाया गोमती साहु दीदी सुनकर बहुत मजा आया माटी के गीत वास्तव में माटी के गीत है संगवारी हमर धरती के गीत है हमर माटी के गीत है हमर अंतस के गीत है हमर ढोला मारू हमर मया प्रीत के गीत है दादा हो। तो 5 जून लीजिए फिर सुनिए सुनाया रजनी पटेल दीदी पर्यावरण ले संरक्षण के बारे में सभी श्रोताओं ने इस विषय में बातचीत की और श्रोताओं के पसंद के गीत बहुत बेहतरीन लगा। तो जैसे कथे ना दादा हो जैसे आप मन के मन रही वैसे दूसर ला आप मन देखे तो आप मला अच्छा लगे तो निश्चित आप मन के मन आप मन के स्वभाव बहुत अच्छा सुंदर हो ही। तो एक बार आप मला गीत मन बढ़िया लगा थे 5 जून के किसान भाइयों को कार्यक्रम चौपाल सुनाया सुपर स्टार रामविलास साहेब इस दिन पशु मन ला उमस गर्मी ले बचाव की जानकारी बताया भेंटवार्ता में पर्यावरण से संरक्षण के बारे में शिक्षक चूड़ामणि पटेल के साथ रामविलास पटेल की गोट बाट हमें बहुत शिक्षाप्रद लगा और हमर लोकगीत में सभी गीत पर्यावरण संदेश ले गीत सुनाया बेहद आनंद जानदार लगा आकाशवाणी रायगढ़ को अंतस ले जय श्री राम साहेब। तो इसरो अति बढ़िया अभिव्यक्ति करत रहीन गांव गणेश धाम परसुली जिला बलौद कोतिले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलाऊ दास जयदास देवेश दास धनवंतिन बाई और मोतिन बाई मानिकपुरी। और अगला चिट्ठी शामिल होते क्रम के हिसाब ले गिन्हे दादा हो तो 5वां चिट्ठी लेकिन
भाषा तो माने हमार छत्तीसगढ़ी में आवे, बहुत से शब्द हिंदी के आए, लेकिन ऐसे जबरदस्त भाव है कि मैं पढ़त हूँ आप मन ला सुने में मजा आई, मोला पढ़े में मजा आई और संगवारी ले लिखे में मजा आई सोही। और इस माटिच के गीत के संबंध में हावे कि कैसे सोंधी महक ले महकत हावे हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के आचरा में ये रचे बसे और सुधरे और बने संगीत ले पिरोई हुए गीत मन। तो संगवारी लिखत हैं, पहले नाम बता देता हूँ लिखोया, करही भदले पुरुषोत्तम भाई निर्मलकर शारदा निर्मलकर। और ये मैं लिखा थे, छत्तीसगढ़ का कण कण गीत संगीत स्वर लहरियों से गूंजता है, सरगुजा की सुरम्य वादियों से लेकर बस्तर के घने जंगलों में लोक संस्कृति की अनमोल श्रृंखला है। सुवा ददरिया कर्मा भरथरी पंडवानी चंदेनी बांस गीत खेल गीत सादरी गीत हलवी जागर गीत शार्दुल गीत और गुणी गीत जैसे अनेक लोक संस्कृति की लोकधारा यहाँ के वादियों में गूंजती है। तो बहुत ही लोक संस्कृति छत्तीसगढ़ की सीमा को पार कर सात समंदर पार कर छत्तीसगढ़ की महक को बगरा रही है। इसी संदर्भ ऐसे ही संदर्भ लिए कार्यक्रम माटी के गीत को अपने निराले अंदाज में प्रस्तुति दी बहन गोमती साहू जी ने। कार्यक्रम हमें कर्णप्रिय लगे, गोमती साहू जी को सहृदय से धन्यवाद। 5 जून को कार्यक्रम हेलो संगवारी लेकर आए स्वतंत्र महंत जी ने, कार्यक्रम को हमें बहुत स्वर की लहर अनुभूति करा गई। सफल संचालन उम्दा प्रस्तुति के लिए महंत जी को दिल से धन्यवाद। तो चलो संगवारी हो, आप मन भी बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त लिखे हो और ऐसे ही अपन के दया मया प्यार ला बना रही है दादा हो। और चिट्ठी के क्रम में आखिरी पड़ाव में हवा दादा हो, तो दिनांक 3 जून के प्रसारित लोक रंजनी कार्यक्रम ला पेश करे रहीन रजनी पटेल हर। प्रस्तुति हर बहुत बढ़िया लागिस, मनमोहक लागिस और ये लोक रंजनी कार्यक्रम हर हमर भरपूर मनोरंजन तो कराथे और एकर ले सीख और प्रेरणा तक को मिलते। और सफल प्रस्तुति पर रजनी पटेल और आकाशवाणी परिवार ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई। मदनपुर कमरधा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। तो ये आज के आखिरी चिट्ठी रही संगवारी हो, आप सबो चिट्ठी लिखो है दादा माला बहुत बहुत मया दुलार प्यार और ऐसे चिट्ठी के माध्यम ले मया दुलार ला बनाए रखे दादा हो। और आप मन जैसे भाव अभिव्यक्ति शब्द मन के चयन करते बहुत बढ़िया लागते और आप मन की चिट्ठी माला पढ़े ले खुले हमार हृदय ले आनंद आते, तो आप माला एक घव धन्यवाद। तो अब दादा हो चला एक गोट बाट मला थोड़ा विराम दी और अतकी बढ़िया बढ़िया आप मन चिट्ठी लिखे और हमर देखा छत्तीसगढ़ तो धान के कटोरा कथन हमर देश भारत भूया को ले कृषि आधारित हावे और खेती में सबले ज़्यादा महत्व होते पानी के दादा हो। तो ये खेती किसानी और हमर हित मित प्रीत और हितवा है पानी, ये लोकगीत सुनाता हूँ सीताराम वर्मा और लखन नेताम के स्वर में। तो ये सुनाओ, खेती किसानी हितवा पानी।

0: हाँ ये हो गए खेती किसानी हितवा पानी बने लागी सोई संगवारी हो। और जैसे कहत रहे दादा हो कि 90 बच्छर हो गए आकाशवाणी ला, तो श्रोता मन के हमन विचार मन आप मला सुनाथन। तो आज आखिरी दिन है संगवारी हो 8 जून, तो आज के दिन हमें श्रोता संगवारी हमें भूपेश साहू ये मन के विचार ला चला सुना जाए आकाशवाणी 890।
1: आकाशवाणी 890।
2: मैं भूपेंद्र साहू आप सभी श्रोताओं और आकाशवाणी से जुड़े समर्पित साथियों को इस गौरवशाली अवसर पर नमन करता हूं। रेडियो केवल एक माध्यम नहीं बल्कि जन जन की आवाज, संस्कृति का संवाहक और समाज को जोड़ने वाला सशक्त सेतु रहा है। वर्षों से आकाशवाणी ने समाचार, संगीत, शिक्षा, कृषि, मनोरंजन और लोक संस्कृति के माध्यम से लोगों के जीवन को समृद्ध किया है। आकाशवाणी रायगढ़ ने भी अपने क्षेत्र की भाषा, बोली, परंपरा और प्रतिभाओं को मंच देकर समाज में जागरूकता और आत्मीयता का संदेश फैलाया है। यह हम सभी के लिए एक गर्व की बात है कि रेडियो आज भी अपनी विश्वसनीयता और अपनत्व के कारण हर दिल में बसा हुआ है। मैं कामना करता हूँ कि आकाशवाणी रायगढ़ आने वाले समय में भी इसी प्रकार नई ऊँचाइयों को छूता रहे, जन सेवा का संदेश फैलाता रहे और श्रोताओं के दिलों में अपनी विशेष पहचान बनाए रखे।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी। अब चलो गोट बाट लाओ आगो ढहर में हवराई देता हो। आज के टिप में टिप्बो देता हो कृषकों की आय सृजन का महत्वपूर्ण उद्यम मुर्गी पालन। तो किसान दादा हो हमर देश कृषि प्रधान देश हवे, जहाँ अधिकांश गांव के परिवार मन कृषि और पशुपालन में निर्भर होते। दादा हो बदलत समय में किसान केवल फसल उत्पादन में निर्भर रहे ये है पर्याप्त नहीं रहे नहीं रहेगी सावे। ऐसने में दादा हो मुर्गी पालन एक ठन ऐसने व्यवसाय हवे बन के उभरे हवे, जो न कम समय में कम लागत में कम भूमि और में ज़्यादा लाभ देते, देह के क्षमता रखते। ऐसने और कई कारण हवे कि आज मुर्गी पालन किसान मन के आय बढ़ाए के महत्वपूर्ण साधन बन गए हवे। दादा हो मुर्गी पालन ले अंडा और मांस दोनों के उत्पादन होते, जाकर मांग बाजार में साल भर होते। गांव गवाई में छोटे स्तर ले मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाए जा सकत हवे। ये व्यवसाय ऐसने किसान जाकर कर कम भूया हावे या नहीं छावे वो मन भर संघ में महिला और युवा मन भर रोजगार के अच्छा अवसर साधन प्रदान करते। दादा मुर्गी पालन के सबले बड़े विशेषता ये हवे कि ये माँ कम पूंजी लागते, कम ठौर लागते, फिर उन्नत नस्ल के मुर्गी के चयन करके संतुलित आहार, स्वच्छ पानी, उचित आवास और देखभाल के संग संग नियमित टीकाकरण करात रहे में इनले बेहतर उत्पादन प्राप्त किए जा सकत हवे। वर्तमान में सरकार डहर ले घलो कई ठन योजना चला कि किसान मन ला सहायता करके मुर्गी पालन व्यवसाय पर प्रशिक्षण, अनुदान, ऋण सुविधा घलो उपलब्ध कराते। दादा मुर्गी पालन व्यवसाय में बिछावन जो मुर्गी मन गोबर करते मैंने करते हैं यह उवर गोले बहुत उपयोगी हावे। जैविक खाद के रूप में उपयोग किए जाते, जाकर ले खेती के लागत कम होते, भूया के उर्वरता बढ़ते। एकर अलावा भी ये व्यवसाय है परिवार के पोषण स्तर ला सुधारे के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। काबर की अंडा और मांस उच्च गुणवत्ता वाला घरेज में मिल जाते, जो न पौष्टिकता ले भरपूर रहते और प्रोटीन के अच्छा स्रोत हावे। कुल मिला के दादा हो कहे जा सकत हवे मुर्गी पालन व्यवसाय किसान के अतिरिक्त आय, रोजगार सृजन और पोषण सुरक्षा के प्रभावी माध्यम हवे। यदि ये व्यवसाय ला वैज्ञानिक तरीका ले अपना के किए जाए तो किसान के आर्थिक स्थिति मजबूत हो के संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। तो जरूर किसी प्रेरणा चाहिए दादा हो और चला एक घाव गोट बाट ला विराम दी आओ एक ठन ऐसने मने हमर दादा हो हमर छत्तीसगढ़ में हमन समय के समय सारणी बने हावे, जोन हमन कई प्रकार ले हमन प्रयोग करथन। पहले जमाना में कहते हैं आजकल तो हमन लुका जाते हैं, जैसे कि भिनसरहा लगभग 4 बजे ले 5 बजे के मांझा, झुलझुला 5 बजे ले लेके 5:30 बजे तक पंग पंघा उतर के माने सुबह बिहानिया सूर्योदय ले के जोन लालिमा रहते वहाँ तक, और बिहानिया माने बिहान सूर्य उदय तक, और गरवा ढिलाती लगभग 7 ले 8 बजे तक, मझनिया 12 बजे ले 2 बजे तक, और बेरा ढरकत की माने 2:30 बजे ले लगभग 4 बजे तक, संझा 4 बजे ले 5:30 बजे तक लगभग, और बेरा बुढ़ती सूर्यास्त के बेर बुढ़ती समय लगभग आगी बारे के बेरा जोन लगथन हमन मुंदिहारी के बेला, और बियारी के बेला रात में खाए के समय दुपेटिया बियारी माने गर्भवती महिला मन ल खाए के समय जल्दी होते, काबर घर के सियान मनखे ल खवा ले के बाद गर्भवती महिला मन ल जल्दी खाए बर कहे जाते, काबर की उनके पेट में एक ठा बच्चा होले होत रहते तो ओकर पेट ल घोले भर ना होए, एकरे बेला दुपेटिया बेला कहा जाते। और अधरतिया रात्रि के 12 बजे मने ये होते। और सुकुआ पहाती, सुकुआ पहाती हम तुम हमन भोर के तारा कथन या शुक्र तारा कथन, ये भिनसरहा ले थोड़े पहले शुक्र तारा ले, हिंदी में भोर के तारा भी कथन ऐसने। तो चलो एक बढ़िया तुम छत्तीसगढ़ी के लोकगीत सुना दो, ये पहाती सुकुआ के और स्वर हावे परशुराम यदु और कमला वर्मा के, तो ये सुना ये पहाती सुकुआ।

मदद हो। ये पहाती के सुकवा बिहान हो गए ना परसराम यदि हो कमला वर्मा के स्वर्म सुनत रह संगवारी हो चला ठौर मिल ही बाँचे रही समय तो आओ सुनबो कोठी अभी गोटवार ला थोड़कन जल्दी सरकाई तो दादा हो। सुरक्षित खेत खुशहाल किसान यही है असली भारत की पहचान। खेत बचाओ अभियान चलत है दादा हो अभी एकर अंतर्गत है तो किसान दादा हो सुरक्षित खेत है ही खुशहाल किसान की पहचान हवे। जब खेत मन सुरक्षित रही तभी उत्पादन बढ़ी किसान के आय में वृद्धि हुई और देश के अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। खेत ला बचाए बर किसान ला चाहिए कि माटी के परीक्षण संतुलित मात्रा में उर्वरक मन के उपयोग करें जैविक खेती ला बढ़ावा दें जल संरक्षण के उपाय मल्ला अपनाएं अपन खेती डोली के पार मल्ला मजबूत बनाए पानी ताकि उमें ठहरे रुके और उमा वृक्षारोपण करके वर्षा जल के संरक्षण करें माटी के कटाव ला रोके भूमि की उर्वरा शक्ति ओला बाँची तभी हमार खेती किसानी बाँची। दादा वो हमार देश कृषि प्रधान देश आवे यहाँ के मैंने असली पहचान कुशल किसान हवे। खेत किसान के सबले बड़का पूंजी हवे। खेत मन के संरक्षण अत्यंत आवश्यक हवे। खेत बचाओ अभियान के उद्देश्य कृषि भूमि करा जो क्षमता है जो वर्तमान समय में घटत जात है जल भराव ले प्रदूषण ले अंधाधुर रासायनिक पदार्थ के उपयोग ले बचाना हवे ये ला खेती योग्य बनाना हवे। तो ये तो हो जाता हो भूमि बचाओ के ऊपर। और दूसरा चर्चा देता हूँ नीली दुनिया को बचाना है समंदर को स्वच्छ बनाना है विश्व महासागर दिवस। तो किसान दादा वो हर बच्चर 8 जून ले विश्व महासागर दिवस के नाम लो घोलो मनाए जाते एकर उद्देश्य महासागर समुद्र मन के महत्व के प्रति मनखे मन जागरूकता लाना हवे समुद्र मन के संरक्षण पर प्रेरित करना हवे। महासागर मन हमार पृथ्वी के लगभग 70% भाग ल ढके हवे अथाह जल राशि ये मन पृथ्वी में जलवायु संतुलन बनाए में ऑक्सीजन प्रदान करने में धरती में वर्षा कराए में सहायता करते हैं। एकर अलावा लाखों करोड़ों मनखे ला आजीविका प्रदान करते हैं। अब प्लास्टिक कचरा तेल रिसाव रासायनिक प्रदूषण जलवायु परिवर्तन भारत जनसंख्या औद्योगिकरण शहरीकरण अनियंत्रित वाहन चालन ये कारण भी भूमि के कटाव यहू भी सब्बो नदी नरवा के माध्यम ले समुंदर में जाके मिल जाते हैं और समुंदर ला प्रदूषित करत हमें महासागर गंभीर संकट उत्पन्न करत हमें समुद्री जीव जंतु मन के अस्तित्व मन खतरा में पड़ गए हमें लाखों टन कचरा हर दिन सागर में मिलत हवे। एकर बर हमला महासागर समंदर ला स्वच्छ और सुरक्षित रखना हवे हम सब के जिम्मेदारी हवे। विश्व महासागर दिवस हमला संदेश देते कि प्लास्टिक के कम उपयोग कराओ कचरा के उचित निपटान कराओ जल स्रोत मन ला प्रदूषित होले बचावा। आज हम महासागर मन के रख रखाव करबो तभी अवैया पीढ़ी ला स्वच्छ और समृद्ध समुद्री वातावरण मिले पाही। सही मा नीली दुनिया ला बचाना हवे समंदर ला स्वच्छ बनाना हवे ये हर केवल एक नारा ही नहीं बल्कि हमार सामूहिक जिम्मेदारी घोले हवे। तो ये तो हो दादा हो। अब आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड दादा हो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY के अंतर्गत आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड 70 बच्चर और ओकर ऊपर के वरिष्ठ नागरिक मतलब बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करे के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हवे। एकर अंतर्गत पात्र बुजुर्ग मन ला निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध कराए जाते एकर माध्यम से सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पताल में उपचार बर निर्धारित राशि तक के स्वास्थ्य बीमा के लाभ प्राप्त किए जा सकत हवे। योजना के उद्देश्य वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधित आर्थिक बोझ कम करना वरिष्ठ नागरिक मल्ला गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना हवे। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाए बर आधार कार्ड मोबाइल नंबर और आवश्यक पहचान दस्तावेज के आवश्यकता पड़ते ये मतलब लेके CSC केंद्र में जाके या कोई संबंधित पोर्टल है ओकर माध्यम ले पंजीयन कराया जा सकत हवे। तो दादा हो ये आयुष्मान व्यय कार्ड वंदना कार्ड जरूर बनवाना चाहिए। और चलो जात दादा हो एक ठनाव गीत सुनात हो हमारे जैसे मैं कहत रहे कि पूर्वैया हवा के बहुत महत्व है हमारे देश में तो मोर भारत के पूर्वाही झालाराम साहू और संगवारी मन के स्वर में ये सुनाओ संगवारी हो ये लोकगीत ला मोर भारत के पूर्वाही।

मरहा खुरहा सरवा ररवा मरहा खुरहा मोर भारत के पूर्वाही सुनत रह संगवारी झालाराम साहु संगवारी मन के संग में आओ दादा हो विषय तो हावे अब समय है बदलाव का स्वस्थ जीवन अपनाए तंबाकू से दूर रहें तो दादा हो तो नशा नाश के जड़ हावे सबो जाना थन तो एकल जत के जल्दी हो सके दूरिया होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए शिक्षा के अवसरों में वृद्धि यह दादा हो भारत सरकार के अभियान हावे कि अल्पशिक्षक मतलब सबो समान अधिकार मिले एक बरबर प्रशिक्षण के व्यवस्था हावे रोजगार आत्मनिर्भरता और बेहतर जीवन शैली के छात्रावास के सुविधा के संग संग कई शैक्षणिक योग्यता के माध्यम ले ये विद्यार्थी मन भर अवसर के उपलब्धि मैंने होत हवे दादा हो तो जैसे कहते हैं दादा हो दार भात चूर गए मोर कथा नहीं पुर गए फिर वही दादा हो भेंट इधर में चलत चलत मुलाकात तो स्वस्थ रह सुखी रहो मस्त रह और मोला दिया विदा तो जात जात दादा हो नशा नाश के जड़ हवे एकर ले जल्दी मुक्त हुआ मितान और जाय के बेरा जमो सुनिया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

0: गैर फिल्म गीतों के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आमिर खुसरो की रचना, स्वर था आबिदा का।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

इसके साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले सुने फिल्म यस बॉस का गीत। आवाज है अभिजीत की, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार जतिन ललित।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: नमस्कार, मैं पूजा पटेल सारंगढ़ से और मेरी ओर से समस्त आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने का यह स्वर्णिम अवसर हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। आकाशवाणी ने दर्शकों से जन तक ज्ञान, संगीत, समाचार और संस्कृति की पहुंच बनाई है। रायगढ़ जैसे छोटे से शहर को भी इस राष्ट्रीय माध्यम से जुड़ने का मौका मिला, यह हमारे लिए संतोष की बात है। हम इस यात्रा के प्रति कृतज्ञ हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमन है उन सभी रेडियो कर्मियों को जिनकी मेहनत से यह सफर सफल हुआ। जय हिंद।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

फिल्म इश्क के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री

राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपये देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुँच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
5: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
7: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
5: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
8: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम आपके लिए।

द ट्रेन, इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: वो फिल्म थी दिल ही तो है, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा,

बूंद जो बन गई मोती। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, भरत व्यास के बोलों को सुरों में ढाला सतीश भाटिया ने।

0: वर्मा मलिक के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था, महेंद्र कपूर को आपने सुना, फिल्म थी दिल और मोहब्बत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: centric and very well diverse and technology driven. So this is what in the first response I have given to you.
1: So Mr. Anand has so extensively outlined the various path-breaking changes which have taken place in these 12 years and what they really mean for the agriculture sector in a nutshell. If we come to you, Mr. Prasad, what do you think are the three most important initiatives of the government in these 12 years which really leap out, which you feel have transformed the Indian agriculture ecosystem and empowered the annadatas of our country and moved our country towards food security?
2: Sunilji, all of us do realize that agriculture is the backbone of a large section of a society. Depends almost 60% of the population is in this sector. It is owing contribution, and the farmers of this country have worked hard through the ages to make India food secure. In fact, just recently, I was talking to High Commissioner of African Nation, South Africa. He was mentioning in the context of the India-Africa Forum Summit, which of course could not help place, that the entire India, the kind of food basket India has, that not only it produces for its own 1.4 billion, but also exports. So he said, it's much more what the population of Africa. I mean, so they said, we're looking to countries like India, which have. So this tells you the long journey our farmers have made in this country. And in the last decade, how much of extra effort is being put in by the government or across the pillars Mr. Anand mentioned in particular, because they are multi-pronged. As far as you said, what are the three takeaways? I mean, there could be many for different people, but I think some of the logistical issues that have been problematic for this country is to ensure irrigation. We are largely still rain-fed irrigation. So the government has been addressing this in multiple, including micro-irrigation. And one of the things is per drop more crop, which is talking about micro-irrigation drip. And this has been, again, going on for almost a little over two decades, because I remember way back in the year 2000, when Mr. Atal Bihari Vajpayee was the prime minister, he sent a mission under then, I think, Mr. Chandrababu Naidu to work on this. So it has been a constant work in progress that there. I think that one of the technological-driven aspects is the Namo Drone DV, which is now using modern technology, as Mr. Anand mentioned about ENAM, using the technology for market access. Yes. Now you're using the drone technology by training women to operate as a pesticides, help them in modern farming.
1: Yes.
2: Lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor-intensive sector.
1: Yes.
2: And increasingly, the hands get costly, because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze the creation of post-harvest management infrastructure, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the problems that have been affecting this particular sector.
1: ओके मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं. जो मैंने अभी मिस्टर आनंद मिस्टर प्रसाद से पूछा, वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख दो तीन इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आंकते हैं, जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन?
3: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था, वो है एमएसपी का फिक्सेशन. पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था. आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
1: जी,
3: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा. लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है सबके सामने. 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है. शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा, ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है. लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है। और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है। चना का देख लीजिए, चना ऊपर है। व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है। इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा मतलब 50-100 रुपये नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहाँ पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस। तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है,
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
3: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो। और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू किए, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीज़ें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश किए। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो थी 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे कोई भी स्कीम हो।
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
0: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी, अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया, जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
1: जी।
0: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी, और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने के बाद, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कहीं नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना, और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है, और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में आमूल चूल परिवर्तन किया जा रहा है। और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था
1: जी।
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी, उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरू होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनील जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस, और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है, ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
2: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए हैं। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम

0: साक्षी जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से हुए तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
1: जी बिल्कुल। एंड मिस्टर आनंद, कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज, द एलाइड सेक्टर्स, दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल?
2: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
1: जी।
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नियत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहाँ हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा। ये
1: पैक्स जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज
2: जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से सारी चीजें हो रही है। मेगा फास्ट फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो आप
2: कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है, भाई 75 साल हो गए, जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है? तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में, और जो डेयरी में आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में, तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
2: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायोइथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है, कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
2: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और
1: जी
2: ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टरबाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही हैं। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात ये है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए,
1: जी
2: ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है, पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
3: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है, कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं, और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओस होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
3: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओस को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी, उनको बिजनेस बढ़ाना है। और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है। किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे

0: जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओस को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
0: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है सप्लाई करती है वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं। और अपने फार्मर को कई एफपीओस तो ऐसे हैं जो कॉस्ट ऑफ जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years, can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
0: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past 2 decades or so. And urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range.
1: Right.
0: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
1: okay,
0: so that the end product also becomes cheaper for the consumers and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
6: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए पेश है कार्यक्रम विविध संगीत।

0: विविध संगीत के कार्यक्रम में अभी जो गजल आप सुन रहे थे उसमें आवाज दी थी पंकज उदास ने।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: विविध संगीत के कार्यक्रम में आइए आप सुने ललित सेन और साथियों का गाया गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

विविध संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को, रचना इंदीवर की थी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुने अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति को, गीतकार हैं समीर।

अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति के गाए इस गीत के साथ ही विविध संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध।

अनुरोध कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमाशंकर शुक्ला का नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म मन मंदिर के इस गीत से। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत के लिए हमें फरमाइश आई है।

आप सभी साथियों की छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झाविंद्र कुमार वर्मा, पटेल रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया, विनोद कुमार गुप्ता, नेहा ईशु और अंशु गुप्ता, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम।

अगले गीत के फरमाइशकर्ता साथी हैं रॉबर्टसन दर्रामुड़ा से, लंबोदर प्रसाद पटेल, फलेंद्र कुमार तेजराम, सुरेंद्र कुमार पीयूष, कृष्ण हेमंत कुमार, राम खयाल, तुलाराम, आरिन, आयान, रूप बसंत, मानस, हरिशंकर और देवा पटेल। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापुर संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रोटी का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अनुरोध कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म दिल एक मंदिर का गीत। आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का है। पसंद है आप सभी साथियों की श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण वाधवानी, श्रीमती विमला वाधवानी, मास्टर हर्ष खुशी और शुभम वाधवानी, यहीं से हैं कन्हैया लाल तीर्थानी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेग वीरक और मीका वीरक, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से हैं भाई कारी राय, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। तो आइए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर का गाया ये गीत।

निकाह फिल्म का गीत आई एप्स ने सलमा आगा की आवाज़ में, गीतकार हसन कमाल और संगीत रवि का है। फरमाइश है आप सभी की, सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र विजकांत सारथी बेमित्रा से, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, जैतुका किशनपुर से, आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हैं हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण, श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहाबा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन।

इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा। लाल टंकी चौक रायगढ़ से चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्या, मनोज मुकेश और अंकित साहित्या। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। केवटा पारा रायगढ़ से हैं मालती निषाद, पार्वती निषाद, अनमोल निषाद और मीनू निषाद। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म काला पत्थर का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के, गीतकार साहिर और संगीत राजेश रोशन का है।

फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री

0: निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।